सुप्रभात। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। प्रातः के 5:59 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

रेडियो वेब 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार। कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल

0: नेदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के आरंभ में लीजिए सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए यह भजन किशोरी अमोलकर की आवाज में।

इसी के साथ आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर खेती किसानी के कार्यक्रम में आज का विषय होगा प्रमाणित बीज। सीबी रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा 6:40 पर। गायक स्वर होगा अनुराधा पोडवाल का और संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। आज का चिंतन आप सुनेंगे 6:50 पर। प्रातः 7:20 पर हिंदी महक कार्यक्रम में आप सुनेंगे इकबाल फजा से हिंदी काव्य पाठ। कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर, शाम 5:30 पर और रात 8:30 पर। प्रातः 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आपका स्वागत है कार्यक्रम के अंतर्गत डीआईजी छतरपुर श्री विजय कुमार खत्री से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत। प्रातः 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे राजालाल विश्वकर्मा। 9:30 पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय सुनेगा 10:30 पर, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की और सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का। बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। इसमें बाल साथी मिलेंगे बालमन के अंतर्गत क्रश नामदेव से, साथी होगी रोचक जानकारी। सांध्यकालीन सभा में शाम 6:00 भजन संध्या के कार्यक्रम में कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार हैं खुशी तिवारी। 7:20 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें सुनिएगा धारावाहिक अटकन चटकन का चौथा भाग। भेंटवार्ता क्रम में सुनिएगा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काम एक लाभ अनेक विषय पर डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव से बातचीत। आज की सीख का विषय होगा जौन गांव में रहिए ऊई जैसी कहिए, ऊंट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू कहिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सुनेंगे दिन में 11:00 सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 सुनिएगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम।

0: 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। 1 बजे का समय होगा महिला कार्यक्रम महिला सभा का। लोक संगीत सुनिएगा 1:30 पर। सुगम संगीत का प्रसारण होगा 1:45 पर। दिन में 2 बजे और 2:50 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 5:02 पर युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा। सुर्खियों में यह कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:15 पर सुनेगा भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की। इस कार्यक्रम का विषय होगा ग्रीन इंडिया मिशन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिएगा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम। रात 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद करा दें, प्रातः 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आपका स्वागत है कार्यक्रम के अंतर्गत डीआईजी छतरपुर श्री विजय कुमार खत्री से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती किसानी कार्यक्रम। इसमें आज का विषय है प्रमाणित बीज।
1: भैया हरो, आज खेती किसानी में एक ऐसी समस्या के समाधान की चर्चा अपन सवई जनन से करत हैं, जौन हर बोनी के समय अपने किसान पंचन के सामू खड़ी हो जात है। हमारे हर बेर बोनी के समय अच्छी फसल लेवे के लाने प्रमाणित बीज उपचारित करके बोवे की सलाह अपने पंचन का देत रात। अब समस्या जा खड़ी हो जात के बीज उपचारित करवे के पहला प्रमाणित बीज कहाँ से लाओ जाए। पंचो, साची बात तो यही है कि किसानन के लाने प्रमाणित बीज की पूरी व्यवस्था किसानन से सरकारी संस्थाएं करवाती हैं, जैसे बीज निगम, बीज उत्पादक सहकारी समितियां, NSC, SFC, एग्रो तिलहन संघ और कई राज्य के बीज निगम, जे सब निजी कंपनियों से मिलके किसान भैयन खा प्रमाणित बीज बटवाती हैं। हमारे कहवे को मतलब जो है कि किसानन के खेतन पे बीज को उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से जोन बीज उत्पादन होत है, वही अगले साल पंचन खा सरकारी विपणन संस्थाएं बांटती हैं, जिसे प्रमाणित बीजन की एकदम से मांग बढ़ जात और मांग के बराबर प्रमाणित बीज किसानन खा पूजा पावो कठिन हो जात है और पंच उन्नत बीजन से प्राप्त होए वाले लाभ नहीं ले पाऊ या फिर उन्हें महंगी दरन पे ऐसे बीज खरीदवे के लाने मजबूर होने आऊ। पंचों, जो अपन खा अच्छे से समझने पड़े है कि बीज उत्पादन में कहूं ना कहूं से अपन भी जुड़े रात, फिर भी प्रमाणित बीज की मांग के बराबर पूर्ति ना हो पावे को एक सबसे बड़ो कारण है बीज उत्पादन कार्यक्रम में बीज प्रमाणीकरण करावे के लाने किसानन की बड़ी संख्या बीज मांग की आवश्यकता के बराबर ना हो पावो। सो हमारी तो सलाह यही है कि अगर अपने किसान पंच ई बीज उत्पादन कार्यक्रम में प्रमाणीकरण करे वाली संस्थान से जुड़ के चले तो अपनी प्रमाणीकरण बीज की आवश्यकता की पूर्ति खुद ही कर सकत। कैसे के अपन खा खुद कितनों बीज लग है जो पतो हुई है और ऐसे किसान जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं, उनकी प्रमाणित बीज की पूर्ति बड़ी आसानी से गांव के संपन्न किसान गांव ही में पूरी कर सकत। पंचो, प्रमाणित बीज की समस्या हर बेर हर फसल की बोनी के समय अपने सामने रात है, तो हम जो भी बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार बीज उत्पादन खा बढ़ावा देवे के लाने और प्रमाणित बीजन की पूर्ति बढ़ावे के लाने बीज ग्राम योजना, बीज उत्पादक सहकारी समितियां गठित करके बीज मिनीकिट, सूरजधारा, अन्नपूर्णा जैसी संस्थान के माध्यम से बीज को प्रमाणीकरण करा के प्रमाणित बीज की उपलब्धता बढ़ावे की कोशिश कर रही है। तो भैया हरो, हमारो तो अपन सवई जनन से जो कहबो है कि सरकार के ई बीज उत्पादन कार्यक्रम में अपन सवई जने ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लें, जिसे प्रमाणित बीज की एक बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकें और अपन खुद प्रमाणित बीज अपने गांव में अपने खेतन में पैदा करके प्रमाणित बीज बोएं और बहुत अच्छी उपज लें। अगले साल बीज व्यवस्था की चिंता इसे अपनी दूर हो सकत है। सो भैया हरो, किसानी में खेत की बारी लगावो और खेत तैयार करवो, जिमे खेत की माटी को परीक्षण, खेत की जुताई, खेत को बखरबो पहलो काम है, उके बाद दूसरी चिंता शुरू होते अच्छे प्रमाण

0: बीज की और ऊखा उपचारित करके वैज्ञानिक तरीका से बोवे की। जीपे अपनी पूरी मेहनत को फल निर्भर करत है, सो बीज को प्रमाणित कराबो अपने हाथन में है। अपन शासन की बीज ग्राम योजना से जुड़े, गांव में बीज उत्पादक सहकारी समितियों को गठन करो और बीज मिनीकट, सूरजधारा या फिर अन्नपूर्णा जैसी संस्थान से जुड़ो। प्रमाणित बीज अपने गांव के अपने खेतन में पजाओ, प्रमाणित कराओ और किसानी में आवे वाली प्रमाणित बीज की एक बहुत बड़ी समस्या से हमेशा खा निजात पाओ। जो अपन खा समझने है कि जैसी प्रमाणिकता और गुणवत्ता वालों बीज अपन अपने खेतन में बेबी, फसल भी अपन खा ओसे ही प्रमाणिक और अच्छी गुणवत्ता वाली मिल है। जी के दाम भी अपन खा बाजार में अच्छे से अच्छे मिल है। यही से जब किसानी में अपन इतनी मेहनत करत है, तब तना मेहनत प्रमाणित और अच्छी पज देवे वाली गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन के लाने भी अपन कर सकत। अगर हमारी बात मानी सो जा पक्की मान लो कि अपन अपने बल पे अपने खेतन में बोवे के लाने अच्छो प्रमाणित बीज खुद ही पैदा कर भी और उको पूरो पूरो लाभ भी ले भी।
1: अभी किसान भाइयों के लिए खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था, इसमें आज का विषय था प्रमाणित बीज। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर था अनुराधा पौडवाल का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: प्रशंसा और प्रोत्साहन तो ऐसे तत्व हैं जो कमजोर व्यक्ति को भी आगे बढ़ा देते हैं और उसकी उन्नति के द्वार खोल देते हैं। वहीं किसी की गलतियां निकालकर उसे हतोत्साहित करने की प्रक्रिया अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कमजोर कर देती है। कई लोगों के लिए प्रशंसा और सराहना किसी पुरस्कार से कम नहीं होती और इसे पाने के लिए लोग अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करते हैं और कार्यों को अच्छे प्रकार से करते रहने पर कुशलता विकसित होती है और कुशलता से कार्य करने पर सफलता मिलती है। सामान्यतः लोग प्रशंसा और प्रोत्साहन के महत्व को नहीं समझते और बेवजह ही दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। देखा यह गया है कि ज्यादातर लोग दूसरों के कामों में अच्छाई कम और कमियां ज्यादा देखते हैं और कभी कभी तो अच्छाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है और कमियों को इतना उभार दिया जाता है कि वो कार्य सबसे निकृष्ट प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उस काम को करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगाता है। लेकिन यदि लाख कमियों के बावजूद भी उस कार्य की किसी ऐसी अच्छाई को उभार दिया जाए जो सबके लिए उपयोगी हो तो वो कार्य सराहना के योग्य हो जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसे सफल होते देखना चाहते हैं तो हमें उसकी सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि हम किसी भी व्यक्ति के छोटे छोटे कार्यों की प्रशंसा करना सीख लें और उसे विश्वास दिलाएं कि उसके प्रयास सराहनीय हैं और उसे लगातार अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए तो ये उस हतोत्साहित व्यक्ति को हिम्मत और हौसला प्रदान करता है। व्यक्ति के मन में बोया गया छोटा सा प्रशंसा और प्रोत्साहन का बीज उसे सफलता के स्वर्णिम शिखर तक पहुंचा देता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को दूसरे के नजरिए से अधिक देखते हैं और अपने नजरिए का कम इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति पहले से ही छवि बना दी जाए तो हम उसी छवि के अनुसार उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। हमारे कार्य की यदि कोई सराहना करता है तो हम अपनी कमियों को जानते हुए भी प्रसन्न हो जाते हैं। सामान्यतः हर व्यक्ति में और उसके कार्यों में अच्छाइयां और कमियां दोनों होती हैं, लेकिन हम उसकी अच्छाइयों को कम और कमियों को ज्यादा देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि कमियों को उभारने से लोग उन्हें दूर करने की सोचेंगे और धीरे धीरे केवल अच्छाई बचेगी। लेकिन कई बार इसके विपरीत होता है कि लगातार कमियां गिराने से लोग त्रस्त होकर कार्य करना ही छोड़ देते हैं। इसके विपरीत यदि कार्य के किसी अच्छे पक्ष को उभार कर उसकी कमियों को दूर करने के लिए कहा जाए तो ये कार्य को सुधारने और उसे उत्कृष्ट बनाने का सही तरीका होगा। घर परिवार की देखभाल करने वाली महिलाओं के कार्यों में अक्सर कमियां निकाली जाती हैं, जबकि उनके प्रशंसनीय कार्यों की कम सराहना की जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि घरेलू महिलाओं में हीनता की भावना आने लगती है और उनमें आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। महिलाएं दिन भर घरों में कार्य करती हैं लेकिन उनके

0: कार्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, उनकी कोई सराहना नहीं करता। यदि घर के सदस्य उनके कार्यों का महत्व समझें और उनकी प्रशंसा करें तो केवल इतना करने मात्र से उनकी आंखों में खुशी की चमक देखी जा सकती है। प्रशंसा एक ऐसा अनमोल उपहार है जो किसी को भी बिना पैसा खर्च किए दिया जा सकता है और इसके बदले में अच्छे परिणामों को पाया जा सकता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हम सभी दूसरों की गलतियां निकालने में सदैव उत्सुक रहते हैं। जरा सी गलती देखी नहीं कि उसे तुरंत गिराने लगते हैं और उसकी अन्य अच्छाइयों को अनदेखा करने लगते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण गलत है। कोई भी व्यक्ति सभी गुणों से परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और उसकी प्रशंसा करने पर वो खुशी से भर उठता है। सच्ची प्रशंसा व्यक्ति के मन में एक ऐसी भावना भर देती है जिसके स्मरण होते ही मन सकारात्मक तत्वों से आप्लवित होता है। प्रशंसा के साथ साथ यदि प्रोत्साहन भी जुड़ा हो तो ये सोने पर सुहागे की तरह कार्य करता है। कुछ व्यक्ति और उनके द्वारा किए गए कार्य तो ऐसे होते हैं जो अनायास ही प्रशंसा को बटोर लेते हैं, लेकिन यदि सच्चे मन से किसी व्यक्ति के कार्यों की प्रशंसा की जाए और उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है जो निरंतर उसे प्रगतिशील बनाए रखता है। इसीलिए मन ही मन दूसरों की तारीफ न करें, प्रशंसा के भावों को शब्दों की अभिव्यक्ति दें और उसका प्रभाव देखें। प्रशंसा एक तरह की मिठास है जो मन में मधुरता को खोल देती है, इसीलिए मिठास सदैव ही बिखेरते रहना चाहिए और खुले दिल से दूसरों की सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए।
1: यह था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: द्विसहस्रतमाब्दीयाः राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः त्रयोविंशत्यधिक द्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतास् तिसृष् भाषास् न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्टिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् ऊनत्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे सार्धत्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से

बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित

में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरला माहे लक्षद्वीप दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईका और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यदल और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए हरित हाइड्रोजन की कार्ययोजना, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर नीदरलैंड्स का सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चोल युग के ताम्र प्लेटों को भारत वापस लाने के संबंधित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। ताम्र प्लेट की वापसी भारत की जनता के लिए भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी ASML के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आएगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कल जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण

0: के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: आज नवाचार और तकनीक का जमाना, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्यायतंत्र की है, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। प्रस्ताव से उत्पन्न चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि चुनावों को एक साथ कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानूनों, अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति शासन से उत्पन्न मुद्दों को हल करना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे चुनाव आचार संहिता के कारण विकास प्रभावित होता है, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग, बैंकों और सरकार के संबंधित विभागों पर भी असर पड़ता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन के पूर्व 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। धार जिले में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए 13 कृषि रथ तैयार किए गए हैं, जो जिले के सभी 510 ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर जिले के सांवेर में कृषि रथ का वर्चुअली शुभारंभ किया। आगामी 10 दिनों में कृषि रथ के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को खरीफ मौसम की क्षेत्रीय फसलों के लिए उन्नत कृषि तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं शिवपुरी जिले में भी सभी विकासखंडों में कल 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया तथा खंडवा में महापौर अमृता यादव ने कृषक जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देवास जिले की टोंकखुर्द तहसील के ग्राम टोककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री के संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए थे। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। वहीं खंडवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को छेगांव माखन तथा देशगांव क्षेत्र में पटाखा गोदामों का पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपर न्यूमरेरी अतिरिक्त सीट निर्धारित की गई है, जिससे नियमित सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को कल 29 रन से हरा दिया। कल रात कोलकाता में नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जबकि गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता

आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, वहीं दिल्ली में 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं कल बारिश दर्ज की गई, जबकि खंडवा, रतलाम, गुना, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में लू का असर रहा। अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी तापमान में विशेष राहत मिलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और तेज धूप से बचाव करने की एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा और गुना में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल डेंगू नियंत्रण, रोकथाम एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतना जिले के मझगवां में फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट के वारासिनी सांदीपनी विद्यालय के छात्र मयंक मात्रे ने इंटरनेशनल स्पेस साइंस कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर ग्रैंड विनर का खिताब अपने नाम किया। और बैतूल में 18 से 25 मई तक जनजातीय समुदाय के लिए लाभार्थी संतृप्त शिविर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र के 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना जरूरी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी महक कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल फजा से हिंदी काव्य पाठ।
1: चंद अशआर पेश करता हूं, समाप्त करें। कहा है कि पहले अपने अंदर देख, पहले अपने अंदर देख फिर दुनिया के बाहर देख, पहले अपने अंदर देख फिर दुनिया के बाहर देख, औरों को तकने से पहले बहुत जरूरी है घर देख। पहले अपने अंदर देख फिर दुनिया के बाहर देख, औरों को तकने से पहले बहुत जरूरी है घर देख। चार मिसरे और पेश करता हूं। कहा कि कुछ घड़ी तो सुकून पा जाता, कुछ घड़ी तो सुकून पा जाता, मिलके जाता तो तेरा क्या जाता, कुछ घड़ी तो सुकून पा जाता, मिलके जाता तो तेरा क्या जाता, दिल मिलाने की बात किसने की, दिल मिलाने की बात किसने की, कम से कम हाथ तो मिला जाता, दिल मिलाने की बात किसने की, कम से कम हाथ तो मिला जाता। गजल के मतलब कुछ अशार समात करें। कहा है कि वो अपनी जिंदगी को हार कर भी जीत जाते हैं, वो अपनी जिंदगी को हार कर भी जीत जाते हैं, गमों के साए में रहकर जो अक्सर मुस्कुराते हैं, गमों के साए में रहकर जो अक्सर मुस्कुराते हैं, वो अपनी जिंदगी को हार कर भी जीत जाते हैं, गमों के साए में रहकर जो अक्सर मुस्कुराते हैं। और शेर अर्ज है कि यकीनन उनके आंगन में अंधेरा हो नहीं सकता, यकीनन उनके आंगन में अंधेरा हो नहीं सकता, हवा के रुख पे रख कर जो दिए अपने जलाते हैं, हवा के रुख पे रख कर जो दिए अपने जलाते हैं, यकीनन उनके आंगन में अंधेरा हो नहीं सकता, हवा के रुख पे रख कर जो दिए अपने जलाते हैं। और शेर अर्ज है कि हमारे हौसलों को तोड़ने के वास्ते दुश्मन, हमारे हौसलों को तोड़ने के वास्ते दुश्मन, हर एक दिन कोई ना कोई नया फितना।

उठाते हैं, हर एक दिन कोई ना कोई नया फितना उठाते हैं, हमारे हौसलों को तोड़ने के वास्ते दुश्मन हर एक दिन कोई ना कोई नया फितना उठाते हैं। ये शेर भी देखें कि पहुंच ही जाते हैं एक रोज मंजिल की बुलंदी पर, पहुंच ही जाते हैं एक रोज, पहुंच ही जाते हैं एक रोज मंजिल की बुलंदी पर, ख्यालों में फजा दिन रात जो सपने सजाते हैं, ख्यालों में फजा दिन रात जो सपने सजाते हैं, पहुंच ही जाते हैं एक रोज मंजिल की बुलंदी पर, ख्यालों में फजा दिन रात जो सपने सजाते हैं। एक गजल के कुछ शेर और समात फरमाए कि बड़ा खुशनुमा है मगर मुख्तसर है, बड़ा खुशनुमा है, बड़ा खुशनुमा है मगर मुख्तसर है, अजब जिंदगानी का अपना सफर है, अजब जिंदगानी का अपना सफर है, बड़ा खुशनुमा है मगर मुख्तसर है, अजब जिंदगानी का अपना सफर है। और मेरी जिंदगानी की रुदाद सुनकर, मेरी जिंदगानी की रुदाद सुनकर जिसे देखो उसकी हुई आंख तर है, मेरी जिंदगानी की रुदाद सुनकर, मेरी जिंदगानी की रुदाद सुनकर जिसे देखो उसकी हुई आंख तर है। और ये शेर भी समाप्त करेंगे, कभी तो गुलामी का समरा मिलेगा, कभी तो गुलामी का समरा मिलेगा, तेरा आस्ताना है और मेरा सर है, तेरा आस्ताना है और मेरा सर है, कभी तो गुलामी का समरा मिलेगा, तेरा आस्ताना है और मेरा सर है। और समझता नहीं है जिगर की खलिश को, समझता नहीं है जिगर की खलिश को, बड़ा बेरहम तेरा तीरे नजर है, बड़ा बेरहम तेरा तीरे नजर है, समझता नहीं है जिगर की खलिश को, बड़ा बेरहम तेरा तीरे नजर है, बड़ा खुशनुमा है मगर मुख्तसर है, अजब जिंदगानी का अपना सफर है। एक गजल के चंद अशआर आखिर में और समाप्त कर लें। कहा है कि मोहब्बत का कुछ ऐसा सिलसिला था, मोहब्बत का कुछ ऐसा सिलसिला था, वो मुझसे रोज मिलना चाहता था, मोहब्बत का कुछ ऐसा सिलसिला था, वो मुझसे रोज मिलना चाहता था। और तेरा किरदार हमको भी पता है, तेरा किरदार हमको भी पता है, तेरा किरदार हमको भी पता है, जमाने में तू कितना पारसा था, जमाने में तू कितना पारसा था, तेरा किरदार हमको भी पता है, जमाने में तू कितना पारसा था। ये शेर भी देखें कि अंधेरों को जो रोशन कर गया है, अंधेरों को जो रोशन कर गया है, अंधेरों को जो रोशन कर गया है, मोहब्बत का एक अदना सा दिया था, मोहब्बत का एक अदना सा दिया था, अंधेरों को जो रोशन कर गया है, अंधेरों को जो रोशन कर गया है, मोहब्बत का एक अदना सा दिया था। ये शेर भी देखें कि उसी ने फिर मुझे रुसवा किया है, उसी ने फिर मुझे रुसवा किया है, उसी ने फिर मुझे रुसवा किया है, मैं जिसको जानो दिल से चाहता था, मैं जिसको जानो दिल से चाहता था, उसी ने फिर मुझे रुसवा किया है, मैं जिसको जानो दिल से चाहता था। ये शेर भी समाप्त करें कि मैं जिसको जानो दिल से चाहता था, अमीरों की तरह हरगिज नहीं था, अमीरों की तरह हरगिज नहीं था, वो मुफलिस था मगर सच बोलता था, अमीरों की तरह हरगिज नहीं था, अमीरों की तरह हरगिज नहीं था, वो मुफलिस था मगर सच बोलता था, वो मुफलिस था मगर सच बोलता था।
और किसी की

0: आंख के आंसू न देखे, किसी की आंख के आंसू न देखे, किसी की आंख के आंसू न देखे, तेरी आंखों पे क्या पर्दा पड़ा था, तेरी आंखों पे क्या पर्दा पड़ा था, किसी की आंख के आंसू न देखे, किसी की आंख के आंसू न देखे, तेरी आंखों पे क्या पर्दा पड़ा था। और ये मक्ता देखें कि किसी के सामने हरगिज ना झुकना, किसी के सामने हरगिज ना झुकना, किसी के सामने हरगिज ना झुकना, मेरी माँ ने फजा मुझसे कहा था, मेरी माँ ने फजा मुझसे कहा था, किसी के सामने हरगिज ना झुकना, मेरी माँ ने फजा मुझसे कहा था, मोहब्बत का कुछ ऐसा सिलसिला था, वो मुझसे रोज मिलना चाहता था। और तेरा किरदार हमको भी पता है, तेरा किरदार हमको भी पता है, जमाने में तू कितना पारसा था, जमाने में तू कितना पारसा था, जमाने में तू कितना पारसा था।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना इकबाल फजा से हिंदी का विपाठ। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोता, अभी आपने सुना सुरेश वाडकर और अनवर की आवाज में विधाता फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोतो, आकाशवाणी के 90 वर्ष भारतीय प्रसारण इतिहास की एक गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुई यह संस्था आज भी देश की आवाज बनकर करोड़ों लोगों तक सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचा रही है।

0: शो था अभी आपने सुना, किशोर कुमार मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में रमेश पंत का लिखा गीत। धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने, फिल्म का नाम था सुरक्षा।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।

0: चलो।
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओ, आकाशवाणी ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव में कृषि कार्यक्रम, युवाओं के लिए विशेष प्रसारण, समाचार बुलेटिन, देशभक्ति गीत, लोक संगीत, नाटक, कवि सम्मेलन और शास्त्रीय संगीत के माध्यम से इसने भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखा। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के उद्देश्य के साथ आकाशवाणी ने हर भाषा, हर क्षेत्र और हर वर्ग को जोड़ने का कार्य किया। दूरदर्शन और डिजिटल मीडिया के दौर में भी रेडियो की मधुर ध्वनि आज लोगों के दिलों में विश्वास और अपनापन जगाती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, जनसंचार और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की 90 वर्षों की अमूल्य गाथा है।

अनपढ़। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का था। श्रोताओं, भारत के जनजीवन में आकाशवाणी केवल एक रेडियो प्रसारण सेवा नहीं बल्कि राष्ट्र की धड़कन रही है। 90 वर्षों की अपनी गौरवपूर्ण यात्रा में आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और जन जागरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। इसकी आवाज ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक हर महत्वपूर्ण क्षण में देश का मार्गदर्शन किया है।

श्रोताओ, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में बावरी फिल्म का गीत। गीत के बोल माया गोविंद के थे और संगीत खयाम का था।

क्या है। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए दिल लगी फिल्म का गीत, सुरैया और श्याम की आवाज में, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत नौशाद का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर

0: उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा

0: पीटरसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी।

0: की। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल

0: और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डी वेंचर करना है।
2: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Christensen to review the entire gamut of bilateral relations.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हमारे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जैसे कि बीच बीच में कुछ विशेषज्ञों को बुलाते रहते हैं, कुछ हस्तियों को बुलाते रहते हैं, ऐसे ही आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम उनका परिचय दें, उससे पहले उनके स्वागत के मैं चार लाइन कि धरा की सादगी से चलकर शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके पीछे संघर्ष की तपिश, मेहनत की चमक और हौसलों की उड़ान होती है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदरणीय डीआईजी साहब श्री विजय कुमार खत्री जी, आज हमारे आकाशवाणी छतरपुर में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसा कि हमारे श्रोताओं को भी मालूम है कि हम आकाशवाणी के 90 वर्ष का सफर तय कर रहे हैं। आने वाली 8 जून को भारत में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होंगे और आगामी 7 अगस्त सन 2026 को हमारी आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूरे होंगे। इस उपलक्ष्य में हम और अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे, पुलिस विभाग से युवाओं के लिए और अन्य सामाजिक मुद्दों पर हमारे जो सवाल रहेंगे उनका आंसर हमारे डीआईजी साहब दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आकाशवाणी की यादों से ही शुरू करते हैं कि आप सुना है कि बहुत नियमित श्रोता भी रहे हैं आकाशवाणी के, तो सबसे पहले सर आपका व्यक्तिगत परिचय हम जानना चाहेंगे।
2: जैसा कि आपने बताया, अभी तो मैं पुलिस उपमहानिरीक्षक डीआईजी छतरपुर

0: जी
1: रेंज में पदस्थ हूँ। मेरा नाम विजय कुमार खत्री है
0: जी।
1: मेरा जो जन्म स्थान है वो दतिया जिला है, दतिया शहर में हम लोग रहते थे
0: जी जी।
1: और जो हमारा बचपन था उसमें मनोरंजन के नाम पे सिर्फ रेडियो ही होता था, और रेडियो में भी उस समय FM नहीं आता था, तो इस वजह से हमारे दतिया में विविध भारती भी नहीं होती थी, तो ले दे करके सिर्फ आकाशवाणी छतरपुर ही केंद्र था जो हमारे दतिया में स्पष्ट आवाज के साथ आता था। तो पूरा बचपन हमारा उसी में बीता है
0: जी जी।
1: छोटे से लेके बड़े तक लगातार सुबह, बल्कि मतलब रात को तो 11 बजे हमें बड़ी कोफ्त होती थी जब कार्यक्रम खत्म हो जाता था, तो लगता था कि इतनी जल्दी, क्योंकि मैं पढ़ने वाला था तो रात को देर तक पढ़ाई करता था, तो रेडियो धीमी आवाज में चलता ही रहता था। तो सुबह से लेकर के 5:55 ऐसे को शुरू होती थी सभा, वहां से लेकर के और रात तक के तीनों सभाएं बिल्कुल नियमित रूप से एक एक कार्यक्रम सुनना, और मतलब वो दिन ही अलग थे, वो दिनों को तो याद कर करके ही मजा आ जाता है
0: जी जी। कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम जो आज भी आपको याद हो कि हम ये रेडियो के माध्यम से सुना करते थे?
1: सबसे जो नियमित रूप से हम सुनते थे वो तो युवाणी तो सुनते ही सुनते थे, जो 5:30 से 6 तक आता था। उसके अलावा रविवार को जो 2 करीब आता था समाचारों के बाद आपकी फरमाइश, वो बहुत अच्छा रहता था। सुबह भी शाम को लोक रंग लोकगीतों का कार्यक्रम होता था, ये सब बिल्कुल नियमित रूप से सुना करते थे
0: जी जी जी जी। तो शुरुआती सर शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ पर हुई है?
1: मेरी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी दतिया में ही हुई, दतिया के ही प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज से पूरा ग्रेजुएशन किया। उसके बाद PG करने के लिए मैं ग्वालियर चला गया था
0: जी। तो सर पुलिस विभाग में आने का सपना कैसे, या शुरुआत से ही रहा ये?
1: नहीं, पुलिस विभाग तो पूरे बुंदेलखंड में और चंबल में पुलिस की नौकरी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, और पुलिस को ही सभी बच्चे हीरो मानते हैं, और पुलिस की ही वर्दी में आगे जाकर के सेवा करने की ख्वाहिश रखते हैं। वो बात तो अपनी जगह थी, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था या पढ़ रहा था तब ऐसा नहीं था कि पुलिस में ही जाना है। उस समय तो चूंकि हम तैयारी कर रहे थे तो जहां भी सिलेक्शन हो जाए वो वहां जाना था, तो DSP में सिलेक्शन हो गया तो DSP में ज्वाइन कर लिया
0: जी जी जी। तो DSP रैंक से सर ने देखिए स्टार्ट किया है और आज हमारे वर्तमान में DIG है। सर हम हर समाज के पहलू को छोटा छोटा आंसर में कवर करना चाहेंगे, जैसे युवाओं के लिए आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे आज का जो युवा पीढ़ी है?
1: युवाओं के लिए तो बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो हमारा पढ़ाई खत्म होने के बाद और किसी भी सेवा में जाने या मतलब जीवन शुरू करने का जो बीच का समय होता है, जो 2-3 का एक संक्षिप्त टाइम पीरियड होता है, उस समय युवाओं को बजाय किसी भटकन के अपना लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, और पूरी मेहनत कर करके और सबसे पहले उस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद फिर तो पूरा जीवन होता है एंजॉय करने के लिए और सब करने के लिए, लेकिन वो वाला जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे ही पुलिस का नाम जहन में आता है विशेष रूप से पिछड़े हुए इलाकों के लोगों में, तो बहुत डर जाते हैं, तो इस डर को उनके अंदर से कैसे निकाला जाए, कैसे एक सहयोगात्मक सकारात्मक उनका जो विचारधारा है वो डेवलप हो सके?
1: पुलिस के प्रति डर वाली जो बात है, अब तो काफी माहौल चेंज हुआ है
0: जी।
1: पुलिस ने भी अपना काम करने का तरीके को बदला है, अब लोकतंत्र हमारा काफी युवा हो बड़ा हो गया, मतलब सब चीजें जो है काफी ऐसी हो गई है कि अब मतलब पहले जैसा नहीं रहा। पहले चूंकि हमारा गुलामी का जो टाइम था उस समय अंग्रेज सरकार जो थी वो पुलिस का उपयोग दमन करने में और अत्याचार करने में ही करती थी, तो वो वाली जो जहन में लोगों के स्मृतियां और चीजें हैं उसको अभी तक भुलाया नहीं है, इसलिए अभी भी पुलिस के प्रति लोगों को ये भावना रहती है कि पुलिस हमारा शोषण करने के लिए और दमन करने के लिए, जबकि अब ऐसा है नहीं। कम से कम ऊपर के लेवल में तो ये निश्चित रूप से सभी लोग मन में यही भाव रखते हैं कि हम समाज की सेवा करने के लिए, हम देश की सेवा करने के लिए। बाकी थोड़ा सा अभी भी चूंकि वर्क कल्चर और वर्किंग स्टाइल और काम करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि उससे अभी भी ऐसा लोगों को लगता है कि पुलिस शोषण करती है या ठीक से व्यवहार नहीं करती है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारा जो संपर्क होता है वो क्रिमिनल लोगों से और अपराधी किस्म के लोगों से ही होता है, तो उस वजह से हम लोगों में जो निचला तबका होता है कर्मचारियों का, उनका थोड़ा सा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा कठोर आवाज में और कठोरता के साथ ही बात करते, इसलिए कभी कभी शरीफ आदमी और सामान्य आदमी भी उसके लपेटे में आ जाता है। इस वजह से थोड़ी सी कभी कभी ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न होती है।

0: लेकिन आमतौर पे पुलिस अब जनता की सेवा करने के लिए ही है और हमसे ये अपेक्षा सभी की है, समाज की भी है, देश की भी है कि जो अपराधी किस्म के तत्व हैं या जो समाज विरोधी तत्व हैं उनके प्रति हम लोग कठोरता से पेश आए, तो इसलिए हम कठोरता से भी पेश आते हैं।
1: जी जी, महिलाओं की सुरक्षा और जो पुलिस की सहभागिता है, सहयोग है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: अब तो काफी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की काफी संवेदनशीलता बढ़ गई है और जो हमारी डायल 112 की सेवा होती है उसमें ये सेवा भी जोड़ी हुई है कि यदि कोई महिला फोन कर करके और मदद मांगती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे कहीं छोड़ दीजिए, तो ये वाली सेवा भी हमारी डायल 112 के द्वारा दी जाती है। और बल्कि मैं आपके माध्यम से ये चीज कहना भी चाहता हूँ हमारी सब माताओं बहनों के लिए कि यदि उनको कहीं भी रात में अकेले पैदल जा रहे हैं या कोई साधन नहीं मिल रहा है तो बेहिचक डायल 112 डायल कर करके और अपनी मदद मांग सकते हैं, उनके पास 10 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई वाहन पहुंचाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होती है और पुलिस ये सेवा दे करके बड़ा मतलब अपने आप को गौरवान्वित फील भी करती है।
1: जी जी, DIG रैंक है, बड़ी रैंक है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो व्यस्तता तो देखिए रहती है, लेकिन जब खाली समय मिलता है तो कैसे क्या आपका समय व्यतीत होता है? क्या गाने सुनने का भी शौक है आपको?
0: हाँ, आज भी गाने सुनने का शौक है और अभी भी मैं रेडियो FM मतलब नियमित रूप से सुनी लेता हूँ, मेरी गाड़ी में भी हमेशा ही बजता रहता है। और इसके अलावा जो बाकी समय है तो मुझे खेलने का बहुत शौक है, तो मैं लॉन टेनिस रेगुलरली खेलता हूँ। यहाँ छतरपुर में भी सौभाग्य से मुझे लॉन टेनिस खेलने का अवसर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं अपना शाम के समय या सुबह जब भी टाइम हो एक बार जरूर खेलने का प्रयास करता हूँ।
1: जी जी, रेडियो की बात हो और गाना ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई गाना जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें रेडियो के माध्यम से?
0: अब आपने एकदम से मुझे तो मुझे एकदम से ऐसे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक गाना जो है चल अकेला मुझे बहुत पसंद है।
1: तेरा छूटा पीछे मेला, राही चल अकेला, बढ़िया मुकेश जी की आवाज का ये गाना।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: आजकल सर साइबर सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या कहेंगे
2: इसमें? एक्चुअली मैं तो पूरे प्रदेश स्तर पे एसपी साइबर भी रह चुका हूँ, पूरा प्रदेश में देखता था। जो साइबर वाली चीज है उसमें 99% जागरूकता की कमी और लोगों की कहीं ना कहीं थोड़े से लालच की इच्छा या इस तरह की चीज रहती है, जिस वजह से वो इस चक्कर में फंसते हैं। नहीं तो देखा जाए तो बैंकों ने भी अपनी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि आपको जब तक आप ओटीपी नहीं भेजेंगे तब तक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन छोटा सा वो लालच दे करके, और स्टार्टिंग भी यहीं से करते हैं कि पहले आपसे बहुत छोटा अमाउंट वो लोग ट्रांसफर कराते हैं, फिर उस छोटे अमाउंट को वापस करने के नाम पे फिर एक छोटा अमाउंट फिर कराते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप कुछ आप अमाउंट आपका फंस जाता है तो फिर आप उनके बातों में आकर के ट्रांसफर करते चले जाते। मतलब ये सेल्फ ट्रांसफर होता है, तो इसको एक्चुअली में बड़ा टिपिकल चीज है। ऐसी स्थिति में दोष देना भी समझ में नहीं आता कि मतलब जो ठगा हुआ है या जिसके पैसे चले गए उसको दोष दिया जाए, या जिसने उसको बेवकूफ बना करके उसको फंसा करके उससे पैसे लिए हैं उसको कितना दोषी बताया जाए। तो कुल मिलाकर के अब तो काफी सुधार हो गई है। अब जैसे जो टेलीफोन पे यदि आप तत्काल सूचना कर दें और 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर उस पोर्टल पे आप डाल देते हैं अपनी जानकारी, तो वो पैसा होल्ड भी हो जाता है और पैसा रिटर्न भी हो जाता है। तो इसलिए आदमी को समझना चाहिए इस चीज को, और फोन पे कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। रीजन यही है कि ये जो छोटे छोटे अमाउंट है, अगर इनको हम लोग पूरे देश के विहंगम उसमें देखते हैं तो ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसलिए लोगों को अपना संभल करके और इसके खतरे को भाप करके ही।
1: जी सर, आपके कार्यकाल के दौरान जो पोस्टिंग रही है वो किन किन विभागों में रही और कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है?
2: मेरी पोस्टिंग्स शुरू में तो काफी समय में डकैती वाले एरिया चंबल में रहा, 7-8 साल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, सब जगह मेरी नौकरी रही। उसके बाद कुछ समय में मालवाड़ी जेल में रहा, उज्जैन में भी मेरी नौकरी थी, इंदौर में भी थी, और आदिवासी अंचल अलीराजपुर बड़वानी में भी रही है। कुछ समय मेरा भोपाल में भी रहा है। बुंदेलखंड में मेरी इससे पहले सिर्फ एक बार पोस्टिंग हुई थी सागर में, उसके अलावा और कोई मेरी बुंदेलखंड में पोस्टिंग नहीं रही है।
1: जी, चूंकि विभाग ऐसा है कि पूरी सर्विस के दौरान खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, तो ऐसा कोई सर्विस के दौरान अनुभव बार बार आपको याद आता हो कि ऐसा हुआ था और ऐसे वो समस्या का समाधान हुआ था?
2: हम लोग के इसमें सर्विस के दौरान लगातार अनुभव तो होते ही रहते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं। कई बार अच्छा काम होता है तो काफी प्रसन्नता भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। कोई कोई अपराध ऐसा हो जाता है जिससे हम लोग न मालूम क्यों अंदर तक जुड़ जाते हैं, और जब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और अपराधियों को पकड़ लेते हैं तो बड़ी मन में आत्मसंतुष्टि मिलती है। अभी ज्यादा पीछे नहीं जा करके मैं यहीं का एक आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया ही किया था उसी समय सितंबर अक्टूबर में ही पन्ना जिले में एक डबल मर्डर हुआ था, उसमें एक महिला को और उसके बच्चे को, 5 साल के बच्चे को मारा गया था। महिला अत्यंत ही गरीब थी, उसका जो पति था वो दिल्ली में मजदूरी करता था। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की उसमें, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसको किसने मारा और कैसे ये हत्या हुई थी। पूरे गांव के एक एक आदमी से पूछताछ कर ली, सब कुछ बहुत मेहनत की गई, जितने भी आसपास डेरे हैं, नट हैं, बंजारे हैं, दूर दूर तक के डेरों को भी चेक किया गया, टेलीफोन वेलीफोन सब कुछ, सीसीटीवी जो भी चीज हम कर सकते सब की हमने, कुछ पता नहीं चल रहा था इसी लगातार। लेकिन हमने प्रयास नहीं छोड़ा, मतलब देखे तो 6-7 महीने हो गए थे उस घटना को।

0: लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा और हमारी टीम में लगातार लगी रही। अब जाकर के उसका पर्दाफाश हुआ तो यह चीज सामने आई कि वहां पे जहां वो महिला रहती थी उसके घर के पास ही एक व्यक्ति चाउमीन का ठेला लगाता था।
1: अच्छा।
0: और उसको कुछ जुए हुए की लत लग गई या जो पन्ना में हीरा खनन का काम करते हैं लोग तो वो उसी लालच में हीरा खनन का काम उसने कुछ लीज वीज भी ले ली जमीन और हीरा तो उसको मिला नहीं लेकिन उस पर कर्जा बहुत हो गया।
1: जी, जी, जी।
0: और उसको ये चीज पता थी कि ये महिला अकेली रहती है और छोटे छोटे बच्चे हैं इसके दो और इसको पैसा बहुत है।
1: जी।
0: बहुत मतलब उसके दृष्टिकोण से बहुत, हमारे दृष्टिकोण से 25-50 हजार,
1: जी, जी,
0: लेकिन उसके दृष्टिकोण से वो पैसा भी बहुत था। तो उसने एक दिन मौका देख करके रात में उसके घर में घुस गया और उसने उसको उसी की साड़ी से गला घोंट के मार दिया और बच्चा आया, बच्चा ने अपनी माँ को तो बच्चे को भी उसे मार दिया और वो जो भी कुछ था पैसा लेके चला गया। और इस तरफ हम लोग कोई भी मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे, हम लोग बहुत सारी अन्य चीजें सोच रहे थे कि कोई मिलने वाला होगा, कोई आता होगा, कोई आता जाता रहता होगा, रिश्तेदार होंगे, देवर होंगे, जेठ होंगे, पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने किस किस एंगल से सोचा। लेकिन बाद में जाकर के मतलब इस तरह से एक अचानक ही नया आदमी अपराधी के रूप में सामने आया तो लेकिन हम लोग को इस बात को ट्रेस कर करके और मामले का खुलासा करके जो संतुष्टि मिली वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो एकदम अकल्पनीय खुशी होती है
1: और एक यादगार बन गई। बिल्कुल, ये बहुत कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ इस मामले को देखिए आपने की अध्यक्षता में ये सुलझाया गया। चूंकि आप बुंदेलखंड में पोस्टिंग है इस समय तो सबसे बड़ी जो चुनौती है बुंदेलखंड की कि ये सुधार होना चाहिए या ये ज्वलंत मुद्दा है तो क्या देखते हैं आप एज ए DIG ऑफिसर?
0: वैसे अगर देखा जाए पुलिस के दृष्टिकोण से तो बुंदेलखंड में अलग से कोई ऐसी समस्या है नहीं, न तो यहाँ कम्युनल का ज्यादा कोई टेंशन है न ही अन्य चीजें। थोड़ा सा पहले के समय में यहाँ जातिवादी और सामंतवादी प्रवृत्तियों का रहा है वातावरण, लेकिन अब वो भी करीब करीब खत्म हो गया है तो अब तो मतलब नॉर्मल ही है सब कुछ। और जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं वो भी मतलब विशिष्ट प्रकार की चुनौतियां नहीं है, वो भी सामान्य प्रकार की चुनौतियां हैं। और जो सामान्यतः अपराध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वही यहाँ का आदमी थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा होता है, इस वजह से कई बार न चाहते हुए अनचाहे ही यहाँ थोड़ा सा वायलेंस हो जाता है और झगड़े हो जाते हैं, विशेषकर जमीनों के मामलों में, तो वो हम लोग ट्रेस करते रहते हैं और सुलझाते रहते हैं।
1: जी जी जी जी जी। चूंकि समय बदलता गया, आप भी बचपन से रेडियो से जुड़े हुए हैं और आज बदलते समय में रेडियो ने अपना स्वरूप धारण किया है, तो बदलते समय में जो आकाशवाणी की उपयोगिता है वो कितनी क्या आप देखते हैं?
0: नहीं, ये तो मैं एक बात यही कहना चाह रहा था कि जो आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें जो कार्यक्रम नॉलेज बेस्ड होते हैं मतलब इन्फॉर्मेटिव होते हैं उनकी हमेशा ही उपयोगिता बनी रहेगी, क्योंकि आकाशवाणी रेडियो तो मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप सुनते रह सकते हैं, आप सफर कर रहे हैं तो भी आप सुनते रह सकते हैं, मतलब एक ऐसी चीज है जो मतलब आप बाकी काम भी करते रहिए और रेडियो भी चलता रहे, मतलब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता और उसमें जो भी इन्फॉर्मेटिव या इंटरटेनमेंट है वो आपको अपने आप ही मिलता रहता है। तो ये तो मतलब सहज सुलभ और सस्ता साधन होता है जो हमेशा उपलब्ध रहता है, तो अच्छा ही है ये तो।
1: पुलिस और आम जनता के बीच सुमधुर संवाद बना रहे इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मधुर संवाद बना ही हुआ है, बना ही रहता है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पुलिस तो समाज के लिए ही होती है और समाज की का ही काम कर रही होती है, कोई हम अलग से किसी और के लिए तो स्पेशली तो करते नहीं है कि इस विशेष वर्ग के लिए काम करना या इस वर्ग के लिए नहीं करना, हम तो सबके लिए बराबर है। तो हम तो अपनी तरफ से हमेशा चाहते हैं कि मधुर संबंध रहें और हमारे जो थाना प्रभारी हैं उनको भी हम लगातार गांवों में भेज करके जन चौपाल और ग्राम सभा इत्यादि इत्यादि के माध्यम से चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति तक उनका कनेक्शन रहे।
1: जी, अंत में एज ए DIG ऑफिसर हमारे जो क्षेत्र की जनता है, पुलिस विभाग है, सबको क्या संदेश देना चाहेंगे आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से?
0: मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और साथ ही साथ जागरूक भी बहुत होते हैं। कई बार तो मेरे ऑफिस में आकर के एकदम सामान्य सा दिखने वाला आदमी भी मुझे कानून की धाराओं का बताने लगता है, समझाने लगता है, तो मैं मुस्कुरा के उससे यही कहता हूँ कि ठीक है तुम्हें पता है लेकिन मुझे भी तो पता है, मैं भी इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ। तो कुल ना करके यहाँ की जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि पुलिस आपके लिए ही है और हम सब लोग जो यहाँ हैं वो आपकी सेवा के लिए ही है और आपके लिए ही है, इसलिए हमसे किसी भी तरीके की परेशानी हो कुछ भी हो बेहिचक किसी भी स्तर पर जाकर के संपर्क करें और मदद लें और मदद जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष इस उपलक्ष्य में हमने अपने आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में आमंत्रित किया था आदरणीय डीआईजी साहब श्री विजय कुमार खत्री जी को। उनके अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, उनके सेवा के अनुभव हम सभी ने सुने और हमारी जनता ने भी सुने। बिल्कुल आपकी जो बताई हुई बातें हैं उन पर जरूर ध्यान देंगे और नियमों का पालन करेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे और किसी भी तरह के क्राइम से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी में आने के लिए।
1: धन्यवाद आपको भी मुझे बुलाने के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आपका स्वागत है कार्यक्रम के अंतर्गत डीआईजी छतरपुर श्री विजय कुमार खत्री से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक रंग कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार हैं राजालाल विश्वकर्मा, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं दीपक कुशवाहा और बेंजो पर हैं जब्बार खान। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए इनसे सुनिए ये लोक भजन।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लोकरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं राजालाल विश्वकर्मा, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं दीपक कुशवाहा और बेंजो पर हैं जब्बार खान। कार्यक्रम में लीजिए इनसे सुनिए ये गारी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लोकरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं राजा लाल विश्वकर्मा, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं दीपक कुशवाहा और बैंजो पर हैं जब्बार खान। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजा लाल विश्वकर्मा से ये धुनी भजन।

इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे राजालाल विश्वकर्मा, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे थे दीपक कुशवाहा और बैंजो पर थे जब्बार खान। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशें फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 298029 यानी 298029 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 241588 यानी 241588। छतरपुर शहर के बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा एसटीडी कोड है 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ, सागर से।
0: नंदिनी तिवारी जी का फोन है
1: जी।
0: कैसे हैं नंदिनी जी आप?
1: हम ठीक है, बस गर्मी हो रही है। और आप क्या?
0: हमारे यहाँ तो और तेज गर्मी हो रही है क्योंकि यहाँ का मौसम थोड़ा तीखा रहता है। गर्मियों में ठंडियों में बहुत तेज ठंडी पड़ती है।
1: मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था बस।
0: जी ये सब आप श्रोताओं का देखिए प्रेम है और आप हमें सुनते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि कार्यक्रम बेहतर से बेहतर रहे।
1: आप प्रस्तुति करते ना प्रोग्राम की, वही अच्छी लगती है। आप नहीं आते तो प्रोग्राम सुना सुना लगता है।
0: जी हाँ, ये होता है, जब हमें किसी की आवाज, किसी की प्रस्तुति का पसंद आती है तो फिर हम हमारा जो कान है उनको बार बार सुनना चाहते हैं, ऐसे ही होता है ना
1: जी।
0: किस तरह के गाने पसंद है नंदिनी जी आपको?
1: अब हमें तो न्यू सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं और ओल्ड भी कुछ कुछ अच्छे लगते हैं। और आपको?
0: जी हमको तो देखिए 90 के दशक के गाने बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हम अच्छे गाने वही मानते हैं जिनको सुनने से मन तरोताजा हो जाए।
1: नहीं बट अभी भी कुछ कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा नंदिनी जी, आपको अगर एक दिन का आरजे बना दिया जाए रेडियो पर, इच्छा होती है ना कि अगर हमें आरजे बना दिया जाए तो हम सबसे पहले ये वाला गाना प्ले करेंगे, तो कौन सा गाना होगा वो?
1: वो सॉन्ग अभी तो नहीं मुझे पता, शायद मैं न्यू सॉन्ग ही प्ले करूँगी।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आज मुझे मूवी का नाम है बार बार देखो।
0: हाँ।
1: और सॉन्ग है काला चश्मा।
0: काला चश्मा
1: जी। और मेरी दीदी को ना चश्मा काले ब्लैक, मतलब जैसे कि उनको ना कोई भी चश्मा लगाने का बहुत शौक है मेरी नानू दीदी को, तो डेडिकेट रहेगा और आपको भी।
0: चलिए बढ़िया बढ़िया, सुनवाते हैं नंदिनी जी आपके फरमाइश का ये गाना।
1: ओके सर, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जांगड़े जी का फोन है बेमेतरा छत्तीसगढ़।
1: जी जी जी,
0: क्या हाल है आपके? गर्मी का कैसा मौसम है वहाँ?
1: बहुत गर्मी है भैया, अभी तो बारिश वगैरह हुआ नहीं है और उम्मीद लगाया है कि थोड़ा बारिश हो तो कुछ गर्मी से भी राहत मिले।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: फिल्म कभी खुशी कभी गम का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: कभी खुशी कभी गम।
1: जी
0: अच्छा योगेश जी, जब हम यात्रा करते हैं
1: हाँ।
0: तो यात्रा में हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का गाना सुनने को मिले तो हमारी यात्रा बहुत आसानी से कट जाएगी, तो किस तरह के गाने आप उस मोमेंट में सुनते हैं?
1: उस मोमेंट में तो जैसे एक गीत है, गीत आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद आ रहा है वो।
0: हाँ।
1: यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से।
0: यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से।
1: जी
0: बिल्कुल, क्योंकि गानों के साथ सफर का कई बार पता भी नहीं चलता है।
1: और सफर करने का काफी ज्यादा शौक है और ख्वाहिश है, और कुछ ख्वाहिश तो पूरे भी हो गए हैं।
0: सही बात है, सही बात है। देखिए जीवन में सारी चीजों का आनंद लेना चाहिए, सफर भी जरूरी है, यात्राएं भी जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है।
1: जी
0: और घूमने फिरने के हिसाब से देखिए गर्मी का मौसम काफी ठीक माना जाता है।
1: जी
0: तो आपकी तरफ गर्मी अच्छी पड़ रही है ना?
1: हाँ भैया, बहुत है गर्मी।
0: खान पान में क्या चलन में रहता है गर्मी से बचाव के लिए?
1: हमारे यहाँ तो भैया बोरेबासी ज्यादा फेमस है गर्मी के दिनों में।
0: क्या होता है बोरेबासी?
1: ये होता ये है भैया, जो हमारा जैसे चावल हम बनाते हैं तो वो जैसे बच जाता है, या फिर हम शौक से भी बनाते हैं तो उसको मतलब कहते हैं पानी में या फिर दही में भिगा के रख देते हैं, फिर उसको खाते हैं।
0: अच्छा, इसको बोरेबासी बोलते हैं।
1: हाँ जी, ना उसमें अचार और प्याज ये सब मिला दे तो फिर काफी अच्छा हो जाता है।
0: बढ़िया, तो योगेश जांगड़ी जी सुनवाते हैं फिर आपके फरमाइश का ये टाइटल सॉन्ग कभी खुशी कभी गम का।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्ते
1: जी। नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रविंद्र प्रजापति। और आप?
0: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
1: जी, क्या बात है, रानू गुप्ता जी का फोन है देवास से।
0: जी,
1: काफी दिनों बाद फोन किया है आपने।
0: हाँ बिल्कुल, आप भी काफी दिन के बाद आए हैं प्रोग्राम में।
1: काफी दिनों बाद हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चूंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष हो रहे हैं और हमारे आकाशवाणी छतरपुर का भी 50वां वर्ष चल रहा है, तो ऐसे में रेडियो से जुड़ी हुई खट्टी मीठी यादें और क्या क्या उपलब्धियां हुई, ये बात कर रहे हैं हम सबसे। तो क्या कोई बात आपको जहन में आती है रेडियो से जुड़ी हुई?
0: रेडियो ने एक तो देखो छतरपुर से तो आपको दिया है, और मैं ज्यादा दोस्ती किसी से करती नहीं हूँ, और एक नंदनी है
1: जो
0: मेरी बहन से ज्यादा मानती हूँ, बस वो दिया। बस आप दोनों इंसान मेरी लाइफ में काफी मायने रखते हो।
1: कहने का मतलब रेडियो ने आपको कहीं ना कहीं अपनापन महसूस करवाया है। और ऐसी कुछ लाइनें हैं कि कुछ रिश्ते आवाज से भी बन जाते हैं, कुछ रिश्ते आवाज से भी बन जाते हैं, कुछ लोग दिल में यूं ही बस जाते हैं। जो रोज सुनते हैं हमारी ये महफिल, वो श्रोता नहीं अपने दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही रेडियो ने आपको देखिए कहीं ना कहीं अपनापन महसूस कराया और अपनों को मिलाया, है ना?
0: जी।
1: तो कैसा मौसम है आपके यहाँ का?
0: मौसम तो ठीक है, गर्मी भी है, थोड़ी ठंडी भी है। मतलब दोपहर में गर्मी पड़ती है, शाम को थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है।
1: जी
0: और
1: जी,
0: आपके छतरपुर का मौसम कैसा है?
1: छतरपुर का मौसम यहाँ थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होती है मालवा क्षेत्र की अपेक्षा, और यहाँ का टेम्परेचर 46-47 ऐसा रहता है कई बार।
0: एक बात और कहना चाह रही हूँ कि आपने जनवरी में जो प्रोग्राम होस्ट किया था ना, वो अच्छा था, मतलब अच्छा लगा था। आपने सिंगिंग बड़ी अच्छी की थी श्रोताओं के साथ।
1: हाँ, हमें याद आया कि श्रोताओं से गाने गुनगुना के सुने थे ना।
0: हाँ बिल्कुल, और आपने भी उनका बिल्कुल भरपूर साथ दिया था।
1: जी हाँ जी हाँ, फिर इसी तरह का कार्यक्रम और आगे करेंगे। देखिए हमारा ये प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ वैरायटी बनी रहे, तो श्रोताओं का मनोरंजन और अच्छे से होता है। देखिए गाने तो हमें सुनवाने ही है।
0: हाँ, श्रोताओं का मनोरंजन हो, आपका भी मनोरंजन हो ना।
1: ये जरूरी है, क्योंकि जो संवाद है वो बातचीत के साथ हास्यास्पद भी अगर बीच बीच में शामिल होता रहे तो संवाद मनोरंजक हो जाता है। कौन सा गाना सुनना है रानू जी आप?
0: कोई किसी को क्यों चाहे अपनी जिंदगी में लाए, और डेडिकेट आपको और मेरी बहन नंदनी को रहेगा।
1: रानू जी सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गाना।
0: ओके, नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: जी हेलो फरमा, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हम ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर से मंजू नामदेव बात कर रहे हैं सर।
0: देरी गांव से बोल रही हैं?
1: हाँ देरी गांव से बोल रहे हैं सर।
0: बढ़िया बढ़िया, तो क्या कर रहे थे इस समय? फोन ट्राई कर रहे थे?
1: आपको फोन लगा रहे थे, काफी देर से ट्राई कर रहे हैं। हाँ सर,
0: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: ये वाला गाना सुनवा दो, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, ये वाला सॉन्ग सुनना है सर आज मेरे को।
0: जी जी जी जी जी, ये वाला गाना क्यों पसंद है जान सकते हैं?
1: ऐसे ही
0: ऐसे ही अच्छा लगता है, बेताब फिल्म का ही गाना है ना?
1: हाँ सर।
0: बढ़िया, और क्या करते रहे?

0: करते हो?
1: कुछ नहीं सर, सिलाई करते हैं और स्वास्थ्य केंद्र में काम करती हूँ।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, और रेडियो का आनंद लेते रहते हैं ना।
1: हाँ।
0: तो सुनवाते हैं मंजू जी आपके फरमाइश का बेताब फिल्म का ये गाना।
1: थैंक यू सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश आकाशवाणी छतरपुर।
0: जी हाँ आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहे हैं, कार्यक्रम है। हेलो फरमाइश, नाम बताएं अपना।
1: बिल्कुल साहब, मैं बोल रहा हूँ सर, ग्राम और पोस्ट अटकोहा तहसील लोकस नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार साहू।
0: सुरेश साहू जी का फोन है।
1: जी सर।
0: जी क्या करते सुरेश जी आप?
1: एक्चुअली मैं सर, मैं साथी शिक्षक हूँ, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: और फिलहाल अभी अभी तो चूंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं,
0: जी
1: तो छुट्टियां बिता रहे हैं और आपके कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहते हैं और जनगणना कार्य से हालांकि मुक्त हैं अपन।
0: जी
1: तो आप

0: बड़ी से जुड़े रहते हैं और तमाम प्रकार की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा की जानकारी।
1: जनगणना चल रही है और जनगणना का देखिए अभी पहला चरण चल रहा है
0: जी,
1: तो इसमें क्या क्या हो रहा है पहले चरण में?
0: इसमें सर सामान्य जानकारी का मिलान होता है। सबसे पहले जिनकी ड्यूटी लगी रहती है वो घरों में नंबरीकरण करते हैं। इसके बाद में फिर जो भी कर्मचारी आते हैं तो वो सामान्य जानकारी और परिवार से संबंधित रजिस्टर में लिखने के बाद फिर उसको ऑनलाइन एंट्री के माध्यम से जमा करते हैं। प्रजापति सर बोल रहे सर
1: जी? हाँ
0: जी साहब, आपकी प्रस्तुति को हम सलाम करते हैं क्योंकि पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी के साथ हम सभी श्रोताओं के लिए आप कार्यक्रम पेश करते हैं।
1: जी जी जी जी, ऐसा कोई गाना बताइए जो आपको आपकी पुरानी यादें याद दिलाता हो।
0: अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि मैं तो ज्यादातर पुराने गानों को ही पसंद करता हूँ, पुरानी मूवी की ज्यादातर पसंद रहती है।
1: अच्छा, कई गाने ऐसे होते हैं ना जो हमारे जहन में बस जाते हैं कि जब हम उन गानों को सुनते हैं तो हमें जीवन के उस क्षण, उस पल की, मोमेंट की याद आ जाती है कि अच्छा हम जब बचपन में खेला करते थे तब ये गाने बहुत चलते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत। पसंद के पूर्व सर दो पंक्तियाँ ध्यान आई, निवेदन करना चाहूंगा
1: जी।
0: उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती।
1: जी
0: जी साहब, तो ये निश्चित रूप से हम सभी श्रोताओं का आत्मविश्वास बढ़ाती हुई पंक्तियां सभी को समर्पित है और इसी के साथ में फरमाइश जो रहेगी तो मुझे बचपन के वो सर बरसात वाले दिन आते हैं तो उसी के संदर्भ में गीत है। फिल्म का नाम है गोपी किशन। उसमें गीत है कि छतरी न खोल बरसात में, हालांकि गर्मी का तो मौसम है लेकिन आपने बचपन की याद का द्वारा जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया।
1: जी सुनवाते हैं सुरेश जी आपके फरमाइश का ये गाना
0: जी साहब। शुक्रिया आपका कार्यक्रम।
1: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार सर जी।
1: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
0: जी मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुसमा थाना सूलना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में सर दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं। सर जी
1: दीपक नामदेव जी बताएं कैसे हैं?
0: गर्मी में कूलर का आनंद ले रहे थे, लाइट में बैठे थे।
1: अच्छा अच्छा, कूलर का आनंद ले रहे हैं।
0: जी जी, और आपको कॉल ट्राई कर रहे थे।
1: जी जी बढ़िया है बढ़िया है।
0: और आप यहाँ का मध्य प्रदेश का भी कार्यक्रम भी सुन रहे थे। हाँ जी सर जी, हमने सोचा एक माह से अधिक हो गया तो फोन भी लगा लिया जाए आपके लिए।
1: जी बताएं कौन सा गाना सुनना है?
0: जी सर जी, अभी शादी विवाह चले हैं तो दाता फिल्म का विदाई गीत सुनवा देना सर।
1: सुनते हैं दीपक जी आपके फरमाइश का ये विदाई गीत।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर, हम ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी सर, कुदरत का कानून का सुना दीजिए।
0: कुदरत का कानून?
1: जी, एक ऐसा कुदरत का कानून।
0: ये गाना क्यों पसंद है, जान सकते हैं?
1: देखा भी है और गाना अच्छा लगता है।
0: अच्छा, इसकी कौन सी लाइन बहुत अच्छी लगती है? इस गीत की
1: लाइन तो सभी अच्छी लगती है, लेकिन ये भी है कि

0: बहुत दिनों बाद बात हो रही है और आपका भी फोन बहुत दिनों बाद आया है।
1: जी सर, लगता नहीं है।
0: अच्छा, आपको आजकल के जो गाने हैं ये अच्छे लगते हैं या पहले के गाने अच्छे लगते हैं?
1: नहीं सर, हमको तो आजकल के बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको तो पहले के, आजकल के तो वैसे जो कोई पढ़ा लिखा है उसको तो कुल समझ में आता ही है, और हमको तो वैसे पसंद नहीं है। ना हमको उनके बोल पसंद है, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलते हैं, और पहले के कुछ भी कोई भी गाना सुन लो बिल्कुल एक एक शब्द आता है समझ में।
0: सुनवा दें संगीता जी आपके फरमाइश का, कुदरत का कानून फिल्म का ही गाना।
1: जी सर,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: दिशा
1: जी
0: जी हारून जी, क्या हाल है आपके?
1: बस हमारे हाल चाल अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है इस वक्त। और आपके इधर सतरपुर में कैसा मौसम है?
0: जी बिल्कुल इसी तरह से है। मोहम्मद हारून जी, बचपन में जब हम रेडियो सुना करते थे तो कोई ऐसा गाना बताइए जो आप सुनना चाहें और आपके जहन में उस गाने को सुनकर बार बार याद आती हो कि हाँ हम रेडियो पर सुना करते थे इस गाने को।
1: जी गाने तो बहुत से हैं, दिलवाले का भी एक बहुत ज्यादा गाना चला था और एक गाना मैं ज्यादा गाता था बचपन में, चीज बड़ी है मस्त मस्त आदमी ज्यादा खिलवाते थे बुलवाते थे, हम बोल नहीं पाते थे तो हमसे खिलवाते थे। जी
0: तो आज कौन सा सुनवा दें आपको?
1: मोहरा का मिल जाएगा?
0: मिल जाएगा,
1: वो गाना सुनवा देना, चीज बड़ी है मस्त मस्त।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल सुनवाएंगे। जी जी जी, तो आपके परिवार में सबसे ज्यादा गाने गुनगुनाने वाले कौन हैं? आप ही हैं?
1: जी, लेकिन रेडियो का शौक तो किसी को नहीं है मेरे से बाहर।
0: तो आप गाने गुनगुना भी लेते होंगे?
1: नहीं, सुनते हैं फोन लगाते हैं बस मनोरंजन, हेलो फरमाश में फोन कर लेते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें हो जाती हैं।
0: तो रेडियो से सुनते हैं या ऐप से सुनते हैं?
1: जी मोबाइल ऐप से सुनते हैं, पहले रेडियो में सुनते थे, लेकिन अब रेडियो तो नहीं है मेरे ख्याल, रेडियो नहीं, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, अब प्रोग्राम उससे ही फोन लगाते हैं, उससे ही प्रोग्राम सुनते हैं।
0: बढ़िया, स्पीकर में अपना कनेक्ट कर लिया तो बढ़िया आनंद लेते हैं कार्यक्रम का।
1: जी और उससे दोस्तों से अपनी बातचीत हो जाती है, कुछ दोस्त भी बढ़ गए हैं रेडियो के माध्यम से।
0: जी हाँ जी हाँ, सुनवाते हैं आपके फरमाइश का मोहरा फिल्म का ये गाना।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
1: मोहम्मद हारून जी बोल रहे हैं।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: ग्राम विरोधी वल्लभ से धर्मेंद्र हरवार।
1: तो रेडियो कितने सालों से सुन रहे हैं?
0: रेडियो तो सर हम 20-25 साल हो गए।
1: तो ऐसा कोई गाना बताइए जो रेडियो पर जो आप गाना सुनते हो तो आपको बहुत पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हूँ, बचपन की यादें तरोताजा हो जाती हूँ।
0: शोले फिल्म का गाना आता सर एक।
1: शोले
0: दोस्ताना हमारा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह के गाने आपको याद है। तो आवाज बताइए, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: आज है साजन चले ससुराल फिल्म का गाना है।
1: कौन सा गाना?
0: दिल जाने जिगर के चुपले सर।
1: दिल जाने जिगर
0: जी सर।
1: गाना गुनगुना लेते हैं कि नहीं?
0: जी अभी गुनगुना तो नहीं है मगर
1: धर्मेंद्र जी सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गाना।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। हाँ हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
0: राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ सर, ग्राम सोर की से।
1: राजेंद्र जी बताइए कौन सा गाना सुनना है?
0: सर मुझे सुनना है आज हम साथ साथ हैं मूवी है, उसमें गाना है ये तो सच है कि भगवान है।
1: हम साथ साथ हैं ये तो सच है कि भगवान है। कितने वर्षों से जुड़े हैं आप रेडियो से?
0: सर रेडियो से तो सर बचपन से ही जुड़ा हूँ मैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात आपको याद आती है जो रेडियो ने आपको दी हो और उसका श्रेय आप रेडियो को देना चाहें?
0: जी सर ऐसी तो बात, अब हर जो खेती किसानी से सर हम लोग जुड़े हुए हैं,
1: हाँ,
0: और
1: हाँ,
0: खेती किसानी से जुड़ी जो बातें हैं
1: जी
0: काफी सुनते हैं और उससे फायदा भी उठाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सर, तो हमें काफी अच्छा अनुभव होता है कि हाँ हमें ये चीज अच्छा लगा और इससे हम काफी फायदा उठा।
1: आपने पसंद किया है गाना हम साथ साथ हैं, सुनवाते हैं फिर आपकी फरमाइश का ये गाना।
0: जी सर, थैंक यू सर।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदी। प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की और सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का।
1: भवदी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और राजेंद्र जी आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: हमारे सभी श्रोताओं को और हमारे आदरणीय सर आपको बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। आज है रविवार, कार्यक्रम है भवदी और इसके लिए हमारे श्रोता

0: अपने पत्र भेजते हैं, समीक्षाएं भेजते हैं, और इसके लिए जो हमारा ईमेल है वो राजन जी बता दीजिए किस पर भेजना है इनको।
1: हमारा आकाशवाणी छतरपुर का भवदीय कार्यक्रम के लिए ईमेल है bhavdiychhatarpur@gmail.com bhavdiychhatarpur@gmail.com। और आप हमें डाक से भी पत्र भेज सकते हैं, अपनी समीक्षाएं भेज सकते हैं। डाक का पता है कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001।
0: बिल्कुल, तो इस ईमेल के पते पर और इस डाक के पते पर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और अब चलते हैं पत्रों की तरफ, देखते हैं पहला पत्र किसका प्राप्त हुआ है।
1: हमें मेल के माध्यम से सर ये पत्र मिला हुआ है, लिख भेजा है सुरेश कुमार साहू। ये लिखते हैं ग्राम्बा पोस्ट अक्टोहा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं आकाशवाणी छतरपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम सूचना मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर होते हैं। दिनांक 3 मई 2026 को प्रसारित हेलो फरमाइश कार्यक्रम, लोकरंग कार्यक्रम, भवदीय कार्यक्रम, लोकधारा कार्यक्रम एवं ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत पसंद आए। दिनांक 9 मई 2026 को प्रसारित जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम राजेंद्र अहरवार जी की प्रस्तुति में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरे पत्र को भी शामिल किया गया, मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ। इसी दिन प्रसारित लोकरंग कार्यक्रम में विविध बुंदेली लोकगीत सुनवाए गए जो मुझे बेहद पसंद आए। इसके साथ ही आपके केंद्र से प्रसारित भक्ति संगीत, खेती किसानी कार्यक्रम, श्री रामचरितमानस गान, चिंतन, आपकी पसंद कार्यक्रम, मनभावन कार्यक्रम, ग्राम सभा में प्रसारित सभी भेंट वार्ताएं, रमतूला, सुनो गीत, गुनो बतकाओ, हेलो लोकरंजन कार्यक्रम और अन्य सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि रात्रि के समय फोन कॉल्स पर आधारित साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम शुरू करने की कृपा करें तो आपकी अति दया होगी। इसके साथ ही ग्राम सभा कार्यक्रम में बुंदेली धारावाहिक नाटक कार्यक्रम को भी शुरू करने की कृपा करें। अंत में समस्त उद्घोषक महोदय जी का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ हमारे सुरेश कुमार साहू जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
0: जी, आकाशवाणी छतरपुर के विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि हेलो फरमाइश, लोकरंग, भवदी, लोकधारा, ग्राम सभा, जब आप गुनगुना उठे कहें, इन सब के प्रति देखिए जो आपने अपना स्नेह और जुड़ाव इस पत्र के माध्यम से हमें व्यक्त किया है, बिल्कुल प्रसन्नता होती है कि हमारे श्रोता नियमित रूप से इन कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। बुंदेली लोकगीतों की बात कहें, चाहे भक्ति संगीत, खेती किसानी, चिंतन, मन भावन, सभी के साथ आपने जो उत्साह पूर्वक शब्द हम तक पहुंचाए हैं, बिल्कुल आपके जो शब्द हैं वो हम सभी के लिए एक ऊर्जा का काम करेंगे। आपके द्वारा दिए गए सुझाव के रात्रिकालीन साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम और ग्राम सभा में बुंदेली धारावाहिक नाटक प्रारंभ करने संबंधी, तो देखिए राजेंद्र जी, बुंदेली जी नाटक जो है वो हम ग्राम सभा में नियमित रूप से
1: समय समय पर आते रहते हैं,
0: और इस समय देखिए कि बुधवार और रविवार को अटकन चिटकन चल ही रहा है, वो भी बुंदेली लघु नाटिका है, उनका भी आप आनंद लीजिए। और एक सजीव फोन इन की बात है तो इस पर देखिए विचार करेंगे और उचित समय आने पर इसको भी कार्यक्रम को आपको सुनने को मिलेगा। आपके आकाशवाणी के प्रति अपनापन इसने इसी तरह से बनाए रखें, अपना अमूल्य समय निकालकर पत्र हम तक प्रेषित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम पंचायत उपरेखा श्री रामपुर डेरा सरीला राठ मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राजू यादव जी का
0: जी।
1: आप लिखते हैं कार्यक्रम भवदीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर प्रणाम नमस्कार। कार्यक्रम हम सुन रहे हैं सर जी, कार्यक्रम वंदना से लेकर सभी कार्यक्रम सुनते हैं, जैसे हेलो फरमाइश व लोकरंजन व हेलो फ्रेंड्स, ग्राम सभा, जब आप गुनगुना उठे, सभी कार्यक्रम सुनते हैं। और इसी के साथ ये अपने इस पत्र की समाप्ति करते हैं।
0: जी पहली बार हमें लगता है इस ईमेल से पत्र प्राप्त हुआ है, इस पति से स्वागत करते हैं अपने भवदीय कार्यक्रम में। आप हमारे यहाँ के नियमित श्रोता ही कहें क्योंकि आपने कार्यक्रम के नाम लिखे हैं तो सुनते ही नियमित रूप से होंगे।
1: जी जी।
0: और अगला जो पत्र आपका समीक्षात्मक हमें प्राप्त होगा बहुत जल्दी प्राप्त होगा अगले कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे राजू जी आप खूब बड़ा सा पत्र लिखेंगे कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ। अगला मेल मिला है ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल नामदेव, चाहना, आकाश, रानी परी, सूरबी और पायल नामदेव। आप देखते हैं आदरणीय सर जी, विवाह कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण मैं आपके 3-4 हफ्ते से कार्यक्रम नहीं सुन पाया और पत्र भी नहीं लिख पाया, साथ ही ना ही फोन लगा पाया हूँ। अब फ्री हो चुका हूँ और आपके लिए पत्र निरंतर लिखता रहूंगा। आगे आप लिखते हैं 11 मई को पत्रों एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम रमतूला सुना, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी

0: प्रस्तुति के लिए भैया आनंद रजक जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे आप लिखते हैं, 12 मई मंगलवार को सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत डॉक्टर बहादुर सिंह परमार से वार्ता सुनी, बहुत अच्छी लगी। फिर 9 बजे लोक संगीत में कल्लू सिंह घोष और हीरा कुशवाहा जी के स्वर में बुंदेली लोकगीतों का आनंद उठाया। 10:05 पर वसुंधरा कार्यक्रम सुना, पर्यावरण पर बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। 10:35 पर पत्रों एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आप की पसंद सुना, इसमें बहुत ही सुंदर ईमेल गीतों को सुनाया गया। फिर शाम की सभा में युववाणी के अंतर्गत सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरियों में युवाओं की पसंद, इस पर भेंट वार्ता सुनी। डॉक्टर अविनेंद्र कौशिक जी से बातचीत कर रहे थे हमारे रविंद्र कुमार प्रजापति जी, बहुत अच्छी भेंट वार्ता रही, बहुत अच्छी लगी। फिर 6:35 पर काशीराम विश्वकर्मा जी से लोकगीत और 7:20 पर लोक मंजरी कार्यक्रम का आनंद लिया। फिर रात्रि 10 बजे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम मनभावन सुना, इसमें राजेंद्र अहरवार जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया, पत्र भी शामिल किए, उन्हें बहुत बहुत बधाई। 13 मई को सुबह 6:35 पर खेती किसानी में डीजल की बचत क्यों और कैसे करें, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली, बहुत बहुत बधाई। और 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ सुना पूरन चंद गुप्ता जी से। 8:30 पर धारावाहिक कार्यक्रम गीता कर्मयोग का भाग तीसरा सुना, बहुत ही सुंदर लगा। दिन में 1 बजे महिला सभा का आनंद उठाया। बस इस पत्र में इतना ही, शेष समीक्षा अगले पत्र में। और इसी के साथ हमारे दीपक नामदेव जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: जी, देखिए आपने तो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता का विवरण किया है, लेकिन ये जानकर देखिए प्रसन्नता हुई कि व्यस्तता के बाद भी आप पत्राचार नहीं कर पाए, लेकिन आपने पुनः नियमित रूप से कार्यक्रम सुना और सुंदर प्रतिक्रिया देखिए ईमेल के माध्यम से आपने हम तक पहुंचाई भी है। आपने 11, 12 और 13 मई को प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम, चाहे रमतुला हो, बुंदेली सुगंध लोकगीत, वसुंधरा आपकी पसंद, और ये सभी कार्यक्रम आपने देखिए सुने हैं। इसके अलावा हमारा एक नया कार्यक्रम का नाम भी लिखा है जो इस समय चल रहा है, सुबह 8:30 पर गीता, ये धारावाहिक आप सुन रहे हैं
0: जी।
1: ये अपना रविवार, सोमवार और बुधवार को सुबह 8:30 पर आता है। महिला सभा कार्यक्रम के बारे में भी देखिए इन्होंने विस्तार और आत्मीयता से अपने विचार साझा किए हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रमों की प्रस्तुति, विषय वस्तु, कलाकारों के गायन में आपने जिस तरह ध्यानपूर्वक सुना, सराहा, उनसे जरूर देखिए हमारे जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो प्रोत्साहित होंगे। आपने नाम भी लिखे हैं आनंद रजक जी, राजन जी, इन सभी की जो प्रस्तुतियां हैं, और बधाई दी है आपने कि इनके कार्यक्रम हमें पसंद आए हैं। इसी तरह आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहिए और समय पर हमें पत्र प्रेषित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम व पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल प्रताप सिंह नागल जी ने। आगे आप लिखते हैं, दिनांक 9 मई को कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठी सुना, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, हमारे रविन्द्र सर जी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही आप लिखते हैं, इसी दिन कार्यक्रम आपकी पसंद सुना, बहुत ही शानदार गीत बजाए गए, बहुत ही ध्यानपूर्वक हम सुन रहे थे, और इसमें हमारे उद्घोषक जी को बहुत बहुत बधाई अच्छी प्रस्तुति के लिए। आगे आप लिखते हैं, 10 मई को कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुना, इसे लेकर आए थे हमारे रविंद्र सर जी, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति रही, बहुत अच्छा लगा, इतने बेहतरीन गीतों के लिए और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए सर जी को बहुत बहुत बधाई। आगे आप लिखते हैं, 11 मई को कार्यक्रम आपकी पसंद सुना, प्रस्तुति सविता मिश्रा जी की थी, ईमेल और पत्र पढ़ रही थी, बहुत अच्छे ईमेल पढ़े और अच्छा कार्यक्रम लगा, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी दिन को कार्यक्रम रमतुला सुना, आनंद भैया जी की प्रस्तुति बेहतरीन रही, आनंद जी को बहुत बहुत बधाई। 12 मई को आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, इसमें शिवेंद्र शुक्ला जी बहुत शानदार प्रस्तुति लेकर आए थे, शिवेंद्र शुक्ला जी को इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी दिन के कार्यक्रम लोक मंजरी में हमने बहुत अच्छे लोकगीत सुने, जिसमें बहुत अच्छे लोकगीत सुने हमें अच्छे लगे, जिसमें बहन उर्मिला जी और नंदिनी जी अच्छी प्रस्तुति लेकर आई, बहुत बहुत बधाई। और इसी दिन 8:15 पर फिल्म संगीत सुना, इसमें उद्घोषक जी ने बहुत अच्छे गीत हमें सुनवाए, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम मन भावन सुना, जिसमें ज्यादा खत और ईमेल शामिल किए। राजेंद्र जी को बधाई, बड़े शानदार गीत और अधिक से अधिक पत्र शामिल हुए। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई और शेष समीक्षा अगले पत्र में। इसी के साथ जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं सर, हमारे मेहरबान सिंह नागल जी।
1: जी आपने देखिए इस पत्र के माध्यम से 9 मई से लेकर

0: 12 मई तक प्रसारित हमारे विभिन्न कार्यक्रम बड़े ध्यानपूर्वक सुने हैं और सुंदर प्रतिक्रिया देखी हम तक भेजी है
1: जी।
0: आपने हमारे यहाँ के कंपेयर अनाउंसर के देखिए नाम भी लिखे हैं और खुलकर आपने देखिए उनकी मन से सराहना की है इस पत्र में, और आपने देखिए ईमेल और पत्र पढ़ने का भी उल्लेख किया है। तो ये देखिए कोई सजग श्रोता होता है या रेगुलर लिसनर होते हैं वही लिखते हैं कि हमारे पत्र को नहीं पढ़ा गया या कौन कौन से पत्र शामिल हुए और किस समय पे कौन सा ईमेल आया, तो ये आपकी सजगता है। और आपने शिकायत लिखी है कि हमारा पत्र शामिल नहीं हो पाया, तो देखिए निराश ना हो क्योंकि देखिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ईमेल आते हैं, हमें ढक के भी पत्र प्राप्त होते हैं, तो सभी को शामिल कर पाना एक साथ संभव नहीं हो पाता है। आप नियमित रूप से अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहें और पत्र लिखते रहें कार्यक्रम फरमाइश के लिए और समीक्षात्मक पत्र बहुदी के लिए, जरूर शामिल होंगे आपके पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबान जी कि अगला पत्र हमें बहुत जल्दी मिलेगा और ऐसे ही आप अपना स्नेह बनाए रखें। कार्यक्रम का ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है बन्नी बुजुर्ग पलेरा जिला टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा का। आप लिखते हैं, भवदीय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता हमारे रविन्द्र सर जी एवं राजेंद्र जी को सब प्रेम नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, 5 मई का आपके पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, उद्घोषक महोदय को बहुत बहुत बधाई। 6 मई का आपके पसंद कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, पेशकर्ता पूर्णिमा चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई। इसी दिन रात्रि 10 बजे मन भावन कार्यक्रम में कुलदीप खरे जी ने बहुत ही मधुर गीत सुनवाई, उनको भी बहुत बहुत बधाई। 7 मई का आपके पसंद कार्यक्रम बेहतरीन गीतों से सजाकर पेश किया निधि पांडे जी ने, बहुत अच्छा लगा, पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। 9 मई को जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम में राजेंद्र अहिरवार जी ने काफी श्रोताओं को शामिल किया और बेहतरीन अंदाज में पेश किया। इसी दिन आपके पसंद कार्यक्रम में बेशुमार श्रोताओं को शामिल किया गया और बेहतरीन गीत भी सुनाए गए, उद्घोषक महोदय जी को बहुत बहुत बधाई। 10 मई रविवार को कोई भी कार्यक्रम मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं शादी में गया था। आगे आप लिखते हैं, 11 मई को कार्यक्रम रमतुला सुना, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए भैया आनंद रजक जी को बहुत बहुत बधाई। इसी दिन कार्यक्रम मन भावन में बेहतरीन गीतों को सजाकर पेश किया और हमारे पत्र को भी शामिल किया शारदा जी ने, उन्हें बहुत बहुत बधाई। 12 मई मंगलवार को सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जी से वार्ता सुनी, बहुत अच्छी लगी। इसी दिन 9 बजे लोक संगीत में कल्लू सिंह घोष और हीरा कुशवाहा जी के स्वर में बुंदेली लोकगीत सुने, बहुत अच्छी लगी। युववाणी के अंतर्गत सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरियां युवाओं की पहली पसंद, इस विषय पर अविनेन्द्र कौशिक जी से बातचीत रविन्द्र कुमार प्रजापति जी ने की थी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बधाई। 13 मई को मन भावन कार्यक्रम में बहुत ही लाजवाब गीत सुनाए गए, पत्र एवं ईमेल दोनों अधिक से अधिक शामिल किए गए। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए समीर गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई, काफी दिनों से व्यस्तता के कारण केवल फरमाइशी कार्यक्रम ही सुन पा रहे हैं और पत्र भी नहीं लिख पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस पत्र में इतना ही, शेष समीक्षा अगले पत्र में। इसी के साथ हमारे ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं सर
0: जी। आपने देखिए 5 मई से लेकर 13 मई तक कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक सुना, सभी का उत्साह वर्धन किया। इस पत्र के माध्यम से आपकी पसंद हो मनभावन, रमतुला, बुंदेली सुगंध, युवाणी हो, लोक संगीत हो, सभी कार्यक्रम के संबंध में देखिए आपने आत्मीय विचार हम सभी के लिए पहुंचाए हैं, प्रेरणादायी विचार हैं। और आपने विभिन्न अनाउंसरों और कंपियर्स के नाम लिखे हैं कि इनकी प्रस्तुति में हमें कार्यक्रम अच्छे लगे हैं और शुभकामनाएं देखिए आपने प्रेषित की हैं, रेडियो के माध्यम से देखिए सब तक पहुंच ही रही हैं। और व्यस्तता के बावजूद देखिए आपने कार्यक्रम सुने, अपनी प्रतिक्रिया भेजी, यही तो देखिए आपका आकाशवाणी के प्रति स्नेह है जो आपको और हमें बांधे रखता है। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखें और पत्र प्रेषित करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला ईमेल सर हमें प्राप्त हुआ है ग्राम बमना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। आप लिखते हैं, 5 मई 2026 को खेती किसानी में बताया गया कि कम पानी में खेती कैसे करें, जानकारी उपयोगी लगी। इसी दिन एक ही गीतकार में नदीम श्रवण के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई और आपकी पसंद में बहुत सारे ईमेल और पत्रों को स्थान दिया गया। एम आलम सर जी को हार्दिक हार्दिक बधाई पहुंची। इसी दिन महाराजा छत्रसाल की 12वीं कड़ी सुनी जिसमें हमारे बुंदेलखंड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। 5 मई 2026 को रामचरितमानस में काक भूषिंडी और गरुण संवाद सुना, बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का लोक रंग और एक ही गीतकार में इब्राहिम अश्क को सुना, कार्यक्रम पेश किया राजेंद्र जी ने, बहुत बहुत बधाई पहुंची। इसी दिन घरेली कार्यक्रम में एक वार्ता सुनी, स्मार्ट खेती कैसे करें, जानकारी अच्छी लगी, वार्ताकार को बहुत बहुत बधाई। भाई हूँ। 6 मई 2026 को महाराजा छत्रसाल की 13वीं कड़ी में बताया गया कि महाराजा छत्रसाल स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान करते थे। उन सुनकर गर्व

0: महसूस हुआ। ऐसे वीर और ईमानदार शासक को नमन करते हैं। इसी दिन एक ही फिल्म से मैं फिल्म दिल को सुना। इस फिल्म के सुपरहिट गीत और फिल्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई, आनंद आ गया। पूर्णिमा चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई पहुंचे। निवेदक निवेदन भी करते हैं, आप लिखते हैं नौटंकी सुनवाने की कृपा करें और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी छतरपुर का हार्दिक धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले अंक में।
1: आपके द्वारा भेजी गई देखिए विस्तृत समीक्षा हम तक ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई है। आपने खेती किसानी, रामचरितमानस, लोकरंग, एक ही गीतकार एक ही फिल्म से और महाराजा छत्रसाल जैसे धारावाहिक कार्यक्रमों को आपने ध्यानपूर्वक सुना है और अपने विचार इससे संबंधित हम तक भेजे हैं। कम पानी में खेती, स्मार्ट खेती तथा बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी जानकारी आपको योगी लगी, यह जानकर भी हमें प्रसन्नता हुई और महाराजा छत्रसाल की कड़ियों के प्रति आपका जो उत्साह है वास्तव में प्रेरणादायक है और आपने उम्मीद है कि सारी कड़ियों का देखिए आनंद भी लिया होगा। एक ही गीतकार हो एक ही फिल्म से कार्यक्रम हो इसकी सराहना आपने हम तक पहुंचाई है। और राजन जी इन्होंने देखिए नौटंकी कार्यक्रम सुनने का भी निवेदन किया है। तो अभी देखिए कुछ महीने पहले हमने नौटंकी के कुछ जो अंक थे 6 से 7 अंक हमारे पास उपलब्ध है वो सभी सुनवाए थे और समय रहते फिर आपको एक बार सुनने को मिलेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, हमारे नियमित श्रोता हैं भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता। नमस्कार के साथ आप लिखते हैं, आचार्य चाणक्य जी का कथन है कि जीवन भर विद्यार्थी बने रहें, आलस्य ना करें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। आकाशवाणी के कार्यक्रमों को हम एक विद्यार्थी की तरह न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बातों को अपनी नोटबुक में लिखने का हर संभव प्रयास करते हैं और जीवन में उपयोग भी करते रहते हैं। इन दिनों आकाशवाणी छतरपुर से एक नया रेडियो धारावाहिक गीत गाता प्रारंभ किया गया है जो कि वर्तमान युग का सर्वाधिक मूल्यवान आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ था और जिसका रचनात्मक कार्य भगवान वेद व्यास जी ने किया था। इसका सरल और सहज भाषा में चौपाइयों के रूप में गायन उसी लोकप्रिय शैली में पेश किया जा रहा है जिसको हम रामचरितमानस के अखंड पाठ के समय या अपने घर पर मानस का पाठ करते समय प्रयोग करते हैं। अब तक हम इस रेडियो धारावाहिक के 3 भागों का रसास्वादन कर चुके हैं। प्रथम भाग में गीता वंदना और अर्जुन विषाद पर विस्तार पूर्वक गायन सुना। 11 मई को द्वितीय भाग में ज्ञान योग के द्वारा आत्मा की अमरता को स्पष्ट किया गया तथा 13 मई को भाग 3 में कर्म योग को सरल ढंग से समझाया गया। श्रेष्ठ पुरुष जो निष्काम कर्म को पूरे अनासक्त भाव से करना चाहिए ताकि वे सामान्य जन के लिए एक आदर्श बन सकें। गीता का मधुर कर्णप्रिय और आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध करने वाला गान सुनकर मन आनंदित हो गया। आगामी 8 जून 2026 को जन जन के विश्वास की वाणी अर्थात हमारी प्रिय आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर रही है। पिछले 5 दशकों से ये हमारा हम सफर और मार्गदर्शक रहा है और जीवन पर्यंत हम इसका साथ निभाने का वादा करते हैं। संपूर्ण आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आकाशवाणी और हमारे सुहाने सफर के बारे में जब भी मन सोचता हूं, हमें 1982 की फिल्म सवाल का ये गीत अनायास याद आ जाता है जिसे लता मंगेशकर और अनवर हुसैन ने गाया है। ये सफर भी कितना सुहाना है, कभी फुर्सत मिली तो ये गीत आप जरूर सुनिएगा, आपके मन को भी सुकून मिलेगा। बहरहाल आप गीत गाता की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम की पूरी टीम को हमारा धन्यवाद और आभार अवश्य रूप से पहुंचा दीजिए। NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग में 12, 13 और 14 मई को ये भी जानिए क्रम में जन जागरूकता और जनहित में जो कार्यक्रम पेश किया गया उसमें हमें भीषण गर्मी से बचने के उपाय, इस मौसम का प्रमुख ज्ञान, प्रमुख खान पान क्या क्या होना चाहिए उसकी मालूमात और लू लगने के लक्षण, लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए इस संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान की गई। ये कार्यक्रम समयोचित रहा। आकाशवाणी हम श्रोताओं का कितना बड़ा हितैषी है जो हमें समय रहते सावधान कर देता है। धन्यवाद उमंग की पूरी टीम और AIR को। 13 मई को युववाणी में युवा चौपाल में CM राइज संदीपनी स्कूल पर ज्ञान वर्धक जानकारी मिली। 10 मई को स्वास्थ्य के आयाम क्रम में डॉक्टर राजेंद्र धमनिया जी से अर्थराइटिस जो कि घुटनों, कूल्हे और जोड़ों की बीमारी होती है, बीमारी के 3 मुख्य प्रकारों की जानकारी तथा इसके मरीजों को खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए तथा लहसुन का प्रयोग खाने में अवश्य करना चाहिए, ये सलाह जीवन उपयोगी रही। डॉक्टर साहब और भेंटकर्ता जी और AIR छतरपुर को सादर धन्यवाद। 9 मई को सुबह 8:30 से 9 बजे के मध्य फिल्मी गीतों का प्रायोजित कार्यक्रम, फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मदर्स डे से 1 दिन पूर्व पेश किया गया माँ शीर्षक पर ये कार्यक्रम अपनी अद्भुत लेखन सामग्री और भावपूर्ण वाचन शैली के कारण हमारे अंतर्मन को

0: छू गया। हमें अपनी अम्मा जी के साथ गुजारे बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक के कई प्रसंग याद आ गए। गीत भी बेहद प्रभावपूर्ण थे। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, कानों में अभी तक गुंजायमान हो रहे हैं। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और कंपियर राजेंद्र अहरवार जी को हमारा हार्दिक धन्यवाद। 14 मई को संग्रहालय के अंतर्गत वेदों के प्रकांड विद्वान पंडित विष्णु शर्मा जी की सुप्रसिद्ध रचना पंचतंत्र के प्रथम भाग का रेडियो नाट्य रूपांतरण सुना। कार्यक्रम रुचिकर लगा, इसे सुनना जारी रहेगा। अनुप्रसारित करने के लिए हम आकाशवाणी छतरपुर के आभारी हैं और धन्यवाद। इसी के साथ हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: ये आपके द्वारा भेजी गई देखिए विस्तृत ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण समीक्षा पढ़कर देखिए मन प्रसन्न हुआ और हमारे राजेंद्र जी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ आपका पत्र
0: पढ़ रहे थे। देखा बहुत मेहनत से
1: आचार्य चाणक्य जी के देखिए प्रेरणादायी विचारों को आत्मसात करते हुए जिस प्रकार आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों को केवल सुनते ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बातों को देखिए नोटबुक में लिखकर जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं वह सचमुच अनुकरणीय है, क्योंकि ऐसे सजग और अध्ययनशील श्रोता कम ही मिलते हैं और इस तरह के श्रोताओं को हम कहें कि आकाशवाणी की यही ये लोग ही वास्तविक शक्ति है। रेडियो धारावाहिक गीत गीता के प्रति देखिए आपका गहर लगाव और उसके विभिन्न भाग जैसे अर्जुन विषाद ज्ञान योग कर्मयोग का सुंदर विश्लेषण देखिए आपने लिखा हुआ है। आपने जिस भावपूर्ण ढंग से इसके गायन उपस्तुति और आध्यात्मिक प्रभाव का वर्णन किया वह कार्यक्रम टीम के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आपकी शुभकामनाएं संबंधित जनों तक पहुंच ही रही हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आपने जो आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं पिछले 5 दशकों के अपने मधुर जुड़ाव को साझा किया है वह वास्तव में भावुक कर देने वाला है। फिल्म सवाल के गीत ये सफर भी कितना सुहाना है का उल्लेख भी बेहद सुंदर लगा और सचमुच आकाशवाणी और श्रोताओं का ये सफर सुहाना है और हमारे आकाशवाणी छतरपुर की भी देखिए राजन जी 50वां वर्ष चल रहा है।
0: 7 अगस्त को हम गोल्डन जुबली मनाएंगे। हम श्रोताओं से निवेदन करेंगे अपनी ऐसी समीक्षाएं हम तक लिखते रहे
1: और हम तो ये कहेंगे कि जो पत्र लिखते हैं उसमें एक पैराग्राफ या 4 लाइन का अपना रेडियो से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बाकी जरूर लिखे,
0: अपना अनुभव लिखेंगे तो आपकी यादें भी ताजा होंगी और हमें भी अच्छा लगेगा
1: और कार्यक्रम और इंटरेस्टिंग बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो उम्मीद है कि जो अगले जो पत्र हमें प्राप्त होंगे एक कोई याद अपनी रेडियो से जुड़ी हुई जरूर इस पत्र में भेजेंगे। आपने हमारे यहाँ के देखिए NCERT युवा चौपाल और 7:20 का सुबह हिंदी वार्ता में स्वास्थ्य के आयाम में एक भेंट वार्ता भी सुनी है, गीत गुंजन कार्यक्रम, संग्रहालय, इन सभी कार्यक्रमों को देखिए आपने पूरे मनोयोग से सुना है। विशेष रूप से देखिए राजन जी की प्रस्तुति में माँ पर केंद्रित एक गीत गुंजन कार्यक्रम था जो आपने सुना है, सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर जी का।
1: जी,
0: आप लिखते हैं, महोदय जी, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। जो दूसरों के लिए भला करता है सहारा बनता है, उसके लिए सभी रास्ते खुले रहते हैं। आपके केंद्र से हमने दिनांक 14 मई को कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में महेश बिलथरे जी की बुंदेली किस्सा नेकी का फल सुनी। किस्सा बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणास्प्रद लगी। कहानीकार को हमारा दिल से साधुवाद स्वीकार हो। दिनांक 9 मई को हमने बुंदेली सुगंध के अंतर्गत शिव नारायण तिवारी जी की वार्ता खजुराहो के अनछुए पहलू विषय पर बहुत सारगर्भित वार्ता सुनी जो हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि कर गई। इसी दिन प्रसारित कार्यक्रम गीत गुंजन का प्रसारण अच्छे शीर्षक के चयन के कारण मन को भा गया। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठी का प्रसारण सार्थक और समसामयिक पत्रों के कारण बहुत ही पसंद आया। कार्यक्रम को बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ पेश किया। कार्यक्रम को पेश करने का अंदाज दिल को भा गया। दिनांक 10 मई का कार्यक्रम हिंदी महक में हमने एक स्वास्थ्य वार्ता सुनी जिसका विषय था हड्डी और जोड़ों का दर्द, बहुत ही जनोपयोगी लगी। इसी दिन का हेलो फरमाइश अच्छे संवादों के कारण सार्थक एवं समसामयिक बातचीत के कारण बहुत ही पसंद आया। इसी दिन प्रसारित कार्यक्रम भवदी का प्रसारण भी बहुत ही अच्छा लगा। दिनांक 12 मई को बुंदेली सुगंध में हमने बुंदेली कहानी सुनी शिक्षा की जोत, बहुत ही शिक्षाप्रद और कर्णप्रिय लगी। इसी दिन प्रसारित कार्यक्रम रसावतरण में कवियों के द्वारा प्रस्तुत कविताएं बहुत ही हृदय स्पर्शी लगी। इसी दिन प्रसारित कार्यक्रम वसुंधरा का प्रसारण बहुत ही अच्छा लगा। दिनांक 13 मई का कार्यक्रम हिंदी महक में प्रसारित काव्य पाठ बहुत ही रोचक लगा। कार्यक्रम युववाणी में प्रसारित युवा चौपाल बहुत ही अच्छा लगा। इसी दिन हमने ग्राम सभा में एक वार्ता सुनी बुंदेलखंड क्षेत्र में आधुनिक फल उत्पादन तकनीक विषय पर महत्वपूर्ण लगी। दिनांक 14 मई का हेलो फ्रेंड्स भी बहुत ही अच्छा लगा। उक्त सभी कार्यक्रमों के वार्ताकारों, कवियों, विषय विशेषज्ञों, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं, संकलनकर्ताओं और सभी उद्घोषकों का हमारा दिल से

0: बहुत बहुत साधुवाद स्वीकार हूँ आदरणीय सर जी। अंत में मेरा कार्यक्रम संबंधी सुझाव ये है कि आकाशवाणी ने राष्ट्र को अपनी सेवा के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ स्थापित इस राष्ट्रीय स्मारक ने देश के कोने कोने तक सटीक जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाकर भारतीय जनमानस को जोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के आधुनिक डिजिटल युग तक आकाशवाणी ने सूचना के सबसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस 90 वर्षीय ऐतिहासिक यात्रा को चिन्हित करने के लिए देश के विभिन्न आकाशवाणी में विशेष कार्यक्रमों और वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि बुंदेलखंड की धड़कन आकाशवाणी केंद्र छतरपुर द्वारा भी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य पर कोई कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे सभी श्रोताओं का समावेश हो सके, ताकि वे भी इस जश्न में शामिल हो सकें। आशा है आप मेरे इस निवेदन पर अवश्य ही ध्यान देने की कृपा करेंगे। शेष अगले पत्र में इसी के साथ हमारे चंद्रेश जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: आपका विस्तृत, सारगर्भित और आत्मीय पत्र कहेंगे, और समय समय पर देखिए आपका पत्र प्रेषित हो ही जाता है हमें ईमेल के माध्यम से। कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में प्रसारित देखे महेश बिलथरे जी की बुंदेली की सन नेकी का फल आपको प्रेरणादायक लगी। इसके अलावा शिवनारायण तिवारी जी के खजुराहो के अनछुए पहलू, कार्यक्रम गीत गुंजन, जवाब गुनगुना उठे, हिंदी महक हेलो फरमाइश, रसावतरण बुसंधुरा और युवाणी कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, ये सभी कार्यक्रम आपने सभी लगभग जो हमारे यहाँ के कार्यक्रम है सुनते हैं और गुनते हैं, और आपने सभी की सराहना भी की है। सभी वार्ताकारों कवियों तक आपने जो बधाइयां है वो भी पहुंचाई है। विशेष रूप से आपने कार्यक्रम की सहज प्रस्तुति, समसामयिक विषयों तथा श्रोताओं से आत्मीय संवाद की जो प्रशंसा की है वह हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। आपका स्नेह और जुड़ाव ही हमें निरंतर बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। विशेष रूप से आपने देखिए एक बात कही है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में हर जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हमारे आकाशवाणी छतरपुर में भी प्रतिदिन आप कुछ न कुछ नया कार्यक्रम सुनते ही होंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष आगामी 8 जून को पूरे हो रहे हैं, और ये वर्ष हमारा आकाशवाणी छतरपुर का 50वां वर्ष है, गोल्डन जुबली हम भी मना रहे हैं। तो कुछ न कुछ नया आपको श्रोताओं से जुड़ी हुई कार्यक्रम भी सुनने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी श्रोताओं की बराबर सहभागिता रहेगी। ऐसे ही अमूल्य विचार अपने पत्र के माध्यम से प्रेषित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रेश जी।
1: तो राजन जी, ये तो थे हमारे पास आज के लिए प्राप्त हुए पत्र। और जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं भवदीय कार्यक्रम में डाक का पता और ईमेल का पता।
0: डाक का पता है भवदीय कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001, और ईमेल पर भी आप अपने पत्र भेज सकते हैं। ईमेल का पता है भवदीय@gmail.com PHAVDIYCHATARPUR@gmail.com।
1: देखिए गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपना ध्यान रखते हुए अपने परिवार, बुजुर्ग और बच्चे जो हैं, और विशेष रूप से बेजुबान जानवर जो हैं, इन सभी का छाया, पानी, भोजन की व्यवस्था जरूर करें। देखिए हमारे आसपास जो जानवर रहते हैं और ऐसे भीषण गर्मी में उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है, तो पानी जरूर रखें। चिड़िया हैं, उनके लिए आप दाना पानी रख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास करते रहें और हमारे आकाशवाणी छतरपुर से रेडियो के माध्यम से कार्यक्रमों का मनोरंजन लेते रहें।
0: भवदीय कार्यक्रम का अब समय पूरा हो रहा है, तो सर अब विदा लेते हैं।
1: तो सुनते रहें कार्यक्रम
0: भवदीय
1: आकाशवाणी
0: छतरपुर।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की थी और सहयोग था राजेंद्र कुमार अहिरवार का। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर, और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। श्रोताओं नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आप अपनी फरमाइश हमें बताते हैं टेलीफोन नंबर 2660902 पर। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755।
1: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैडम, मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी सोनी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
0: बस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या हो रहा था इस समय?
1: बस गर्मी बहुत ज्यादा है मैडम, बैठे हैं छाया में घर में।
0: ये तो बिल्कुल सही बात है, गर्मी सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि अब इस गर्मी के थोड़े थोड़े नुकसान होना भी शुरू हो रहे हैं।
1: जी मैडम,
0: है ना? तो इसलिए
1: घर में बैठकर
0: जी
1: पंखे में नींबू पोदीना का शरबत पीकर गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बताइएगा। अच्छा,
1: अभी हाल ही में आकाशवाणी के
0: जी
1: गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर
0: जी
1: आकाशवाणी परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई।
0: 8 जून 2026 को ये समय पूर्ण होगा, 90 वर्ष का उत्सव भी लगातार आकाशवाणी में अलग अलग ढंग से चल रहा है। कहीं वॉकेथॉन हो रहा है, कहीं संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी कुछ पुराने लोगों से रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इन कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: मैडम जब टेलीविजन
0: जी
1: मोबाइल जैसी सुविधा लोगों से दूर थी
0: जी,
1: तब रेडियो एक माध्यम था लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल सही,
1: दुनिया के समाचार पहुंचाना
0: जी,
1: बच्चों की कहानियां, लोक संगीत गाना सुनाना, इसी से संबंधित जानकारी हम सभी के लिए रेडियो ने कुछ न कुछ दिया है। धन्यवाद आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी भी धन्यवाद देता है अपने श्रोताओं को, आभार व्यक्त करता है सभी सुनने वालों का कि आप लगातार अपने पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहे, यानी आकाशवाणी से जुड़े रहे और आकाशवाणी आप तक सूचनाएं, मनोरंजन और समाचार पहुंचाती रहे। बताइए आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है मैडम जिस देश में गंगा बहती है, और गाने के बोल हैं हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने।
0: क्या बात है,
1: देख लो क्या सर कर दिया आज की सामने।

0: हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे, और आप जिस चीज से भी मिले कुछ इस तरह से मिले कि हर मिलने वाले को आपकी याद आती रहे।
1: क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात, इतनी अच्छी दुआ देने वाला कौन कॉलर हमसे जुड़ा है हम जानना चाहेंगे।
0: मैं पालगा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी मंसूरी साहब कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा मैडम, और इत्तेफाक की इतनी बात हो रही है मैडम कि मैं 10-15 दिन बाद लगाता हूँ, और जब भी लगाता तो आपसे ही मुलाकात।
1: जी जी, ये बात हम भी कहना चाह रहे थे लेकिन आपने पहले कह दी, तो इससे सिवाय संयोग के और कुछ नहीं कह सकते हैं। इस गर्मी में क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
0: मैडम गर्मी का तो मैं कहूँगा कि मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैं इससे प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा रख।
1: क्या प्रोटेक्शन रखते हैं?
0: मैं धूप से तो बहुत ज्यादा बचता हूँ, धूप में कहीं पे निकलता नहीं हूँ।
1: हाँ।
0: और कभी निकलना होता भी है तो सिर पे दुपट्टा, सिर पे अपने टोपी रखता हूँ या रुमाल रखता हूँ, और घर में ही अधिकतर रहता हूँ। और जब जैसे ड्यूटी पे भी आते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग बाहर दिन में नहीं निकलते हैं, घर पे वहाँ मतलब घरों के अंदर ही रहते हैं
1: जी।
0: और घर में जो मतलब कि अपना जो तरल पदार्थ रहता है पानी की मात्रा है, इसमें गर्मी में कम से कम 1 लीटर ज्यादा बढ़ा देता हूँ। जैसे आम दिनों में पीता हूँ ना, गर्मी में 1 लीटर और ज्यादा कर देता हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है, और इसका नापतौल यदि ना भी रखा जाए तो भी जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पानी पीजिए, और ऐसा लगे कि पानी पिए हुए थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है तो प्यास ना भी लगे तो भी जरूर पीजिए।
0: जी जी पीता रहता हूँ, मेरे सिस्टर मेरे को बोलती है देखो प्यास नहीं लगती, फिर भी पीता तो पानी, मैंने रहना है, और डिहाइड्रेशन अगर नहीं होना शरीर में तो पानी अपने को पीना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं कि प्यास लगे तब।
1: जी साथ में एक बात का ध्यान हम उम्मीद करते हैं कि सभी रखते होंगे, थोड़ी सी साफ सफाई का भी ध्यान बहुत जरूरी होता है।
0: हाँ,
1: क्योंकि इस समय पसीना बहुत आता है,
0: हमेशा बॉइल वाटर पीते हैं हम लोग।
1: जी सिर्फ पानी की ही साफ सफाई की बात नहीं है मंसूरी साहब, पसीना जैसे बहुत आता है वही हाथ हमारे आंखों में लग गए, वही हाथ मुंह में लग गए, तो इससे कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, तरल पदार्थ और पानी लेते रहें, और साथ ही बताएं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में।
0: फिल्म है घर संसार, जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म है।
1: जी गीत के बोल,
0: चोट लगी है कहाँ यहाँ बताना सकूँ मैं कहाँ।
1: जी

मोहब्बत मुझसे।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: मैं राजेश अग्रवाल बोल रहे हो, राजा राम नगर देवास से।
0: जी राजेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है दीदी।
0: क्या चल रहा था इस समय? कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: रेडियो चल रहा है अभी।
0: जी, तो अभी सुबह से कौन कौन से कार्यक्रम सुने?
1: अभी तो जैसे सुबह था अपने नमस्कार भोपाल, और बाकी ये जो आपका आता सुरमई सवेरा है, और कुछ इंदौर के भी चलता है। जैसे 6 बजे से ही चालू रहता, और फिर बाद में जैसे मैं दुकान आ जाता हूँ तो फिर यहाँ पर सुनता हूँ।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे?
1: आज मेरा गीत है दीदी, ये हम दोनों मिलके कागज के दिल पे, मुकेश जी की आवाज में है।

0: हेलो मैम, नमस्कार
1: जी। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: जी मैम, सागर से बोल रहा हूँ, पंडित शिवनारायण तिवारी।
1: जी तिवारी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, मौसम बहुत गर्म है।
1: जी मौसम तो गर्मी का है तो गर्म तो होना ही है।
0: जी ऊपर वैसी बरसात भी होगी अच्छी।
1: हाँ, उम्मीद की जा सकती है, हर बात को बिल्कुल सीधे सीधे कहा नहीं जा सकता है कि होगा ही।
0: ओ, एक नक्षत्र में अच्छा बारिश बता रहा है, एक में थोड़ा कम।
1: बताने और होने के बीच का जो फर्क है ना, उसी फर्क को इन दिनों हम सब महसूस कर रहे हैं कि अपन कहते जरूर हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं। जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम चक्र गड़बड़ाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि इतनी ज्यादा गर्मी हम लोग सब भोग रहे हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ये है, गाना है मेहंदी वाली रात आ गई, आदमी खिलौना है।

0: हेलो
1: जय माता जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरा नर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी कैसे हैं वर्मा जी?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: बस हम तो आपकी फरमाइश सुनवाने के लिए बैठे हैं, तो बताइए कौन सी फरमाइश पूरी की जाए आपकी?
1: जी मैडम, वहाँ भोपाल में मौसम कैसा हो रहा है मैडम? गर्मी पड़ने लगी।
0: गर्मी तो बहुत तेज गर्मी है, तीखी गर्मी है, सुबह से ही गर्मी हो जाती है, सूरज निकला नहीं कि गर्मी की तीव्रता महसूस होती है। तो अभी पिछले कुछ एक दिनों से तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
1: हाँ जी, इधर भी ऐसा हो रहा है मेरा मौसम
0: जी।
1: बारिश तो आती नहीं, थोड़ी बारिश आ जाए तो क्योंकि थोड़ी ठंड हो जाए, पर मौसम ऐसा हो गया कि बारिश तो आती अंदर आ जाता है बहुत।
0: कुछ चीजें समय और मौसम के हिसाब से ही होती हैं और वो किस रूप में होंगी ये हम बिल्कुल भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं।
1: जी मैडम, तो फिल्म का नाम है मैडम कहीं प्यार ना हो जाए।
0: जी गीत के बोल,
1: और उसमें गाना का बोल है दिन ताना बन्नो की चूड़ी लाख की बन्नो का गजरा लाख।
0: ये गीत तो आप एक बार और भी सुन चुके हैं?
1: नहीं मैडम, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ इस गाने को मैं।
0: ऐसा?
1: हाँ जी हाँ जी, पहली बार ही फरमाइश कर रहा हूँ मैडम ये गाना।
0: हमें तो कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये गीत हम सुनवा चुके हैं। यही गुजारिश की थोड़ा सा अपने फरमाइश के गानों की लिस्ट को बना के रखें और उसमें से जो गाना सुन लेते हैं उसको या तो काट दें या टिक लगा दें उस पे, तो गानों में भी रिपीटेशन नहीं होगा, आपकी फरमाइश भी पूरी होगी और कार्यक्रम की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
1: हाँ जी मैडम, नहीं वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है क्योंकि वो गाने नए नए गाने आए और न तो अच्छा लगता है। ऊपर कई चरणों पर ये होता है कि वो ही गाने बजाते रहते, पर आप जैसे आर जैसे आकाशवाणी भोपाल है तो अलग अलग नए नए गाने या कोई भी गाना वो जो कम बजाओ तो वो प्रयास करते हैं मैडम बजाने का।
0: बिल्कुल, इसीलिए हमारा कहना ये होता है कि एक अच्छी लंबी लिस्ट बना लें अपनी पसंद के गीतों की। और आप लोग तो बहुत नियमित तौर पर आकाशवाणी सुनते हैं, बहुत सारे स्टेशन सुनते हैं, तो सभी जगह से कई सारे गाने बजते हैं। उन गानों में से जो गाना पसंद आए उसे अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए और जो गाना सुन चुके हैं उस गाने को क्रॉस कर दीजिए या काट दीजिए या उसमें टिक लगा दीजिए ताकि वो दोबारा ना करें। तो उससे कार्यक्रम की विविधता और आपकी फरमाइश दोनों का बैलेंस बना रहेगा।
1: जी मैडम बिल्कुल,
0: बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: फोन कर रही हूँ सुने कार्यक्रम।
1: मैम नमस्ते
0: जी। नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी अम्बेडकर चौक टेगरवाड खुरई से राम सखी परमानंद।
0: जी परमानंद जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अरे अभी थोड़े काम से आए थे पोस्ट ऑफिस, थोड़ा टाइम था।
0: अच्छा अच्छा।
1: डाल कर आने।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: चलो बहाने फोन बात ही कर ले।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी अभी शादी का सीजन चल रहा है तो विवाह फिल्म दो अनजाने अजनबी वो सुना दीजिए। कोई सुना दे विवाह फिल्म का आप।

0: हेलो
1: आइए दीदी, सादर नमस्कार
0: जी। स्वागत है कार्यक्रम में। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है, आपका नाम जानना चाहेंगे
1: जी। हृदय से धन्यवाद करते हुए, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से अरुण दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी भोपाल से।
0: ब्रज रेडियो श्रोता संघ के हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी, ये बताएं कि मथुरा के क्या हाल है, कितनी गर्मी पड़ रही है
1: इस वक्त? बहुत तेज गर्मी हो रही है, प्रचंड गर्मी के त्रस्त हैं। चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, लू के प्रकोप में है। तापमान का सवाल है तो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और न्यूनतम मिनिमम जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है रात में।
0: तो बताइए कि इस गर्मी के मौसम में कौन सा गीत आप तक पहुँचाया जाए कि कुछ सुकून मिले मन को।

0: रिंदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यशोदास साहब ने गीत को गाया है,
1: हाँ?
0: हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत है, पहुंच रहा है आप।
0: जी, हृदय धन्यवाद।

0: फोन कर रही, गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रही है?
1: मैं अमृता बोल रही हूँ रीवा से।
0: कैसी हैं अमृता जी आप?
1: ठीक हूँ मैम, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बस हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था इस समय?
1: इसमें मैम आज बस जावित्री
0: तो हो गई पूजन।
1: जी जी,
0: व्रत रहेगा आज या पूजा के बाद भोजन हो जाता है?
1: नहीं मैम, हमारे यहाँ अमावस्या का व्रत नहीं करते।
0: अच्छा,
1: जब तक पूजा नहीं होती तब तक पानी भी नहीं, मतलब जल कुछ भी
0: नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और इस पूजा में क्या कुछ खास बनता है आपकी तरफ?
1: जी वो गुड़ का वो बनती है पूड़ी वगैरह।
0: अच्छा,
1: बट्टे की जो जैसे फल रहते हैं,
0: हाँ,
1: उस टाइप के गोल गोल बनाने,
0: छोटे छोटे, क्या कहते हैं आप लोग उसको?
1: उसको बरगदा।
0: वही नाम जानना चाह रहे थे क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से नाम थोड़े बदल जाते हैं, तो इसलिए हमने पूछा कि वहाँ क्या बनता है और क्या कहलाता है, ये जानना चाह रहे थे। कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: गंगा जमुना सरस्वती का ही।
0: कौन सा गाना?
1: मूवी का नाम है।
0: हाँ?
1: गाने के बोले
0: जी,
1: पति परमेश्वर के सिवा मुझको न परमेश्वर पर चाहिए।
0: लगता है व्रत का थोड़ा असर हो रहा है आप पे। भोजन कीजिए, आराम कीजिए, स्वस्थ बनी रहिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए।

0: इस गीत के साथ ही फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया था अमिता त्रिवेदी ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के लिए नए आयाम तलाशना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने और दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद आज पूजा अर्चना की गई, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि देश ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म और परफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है और मशीन लर्निंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुके हैं। रतलाम के पास आज तड़के तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2026 के दूसरे दौर में उज्बेक खिलाड़ी जावखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के फाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहली पसंद शामिल कर रहे हैं छत्रपति

संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर की। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री की। सनम ने फिल्म का टाइटल ट्रैक पसंद किया है। मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला ने इसे गाया है। गीत और संगीत मिथुन का।

अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई और बाकड़े परिवार के समस्त सदस्य, शिवसेना वसाहत अकोला महाराष्ट्र से कैलाश राव बाकड़े, वंदनाताई बाकड़े और बाकड़े परिवार के सदस्य, सिंगस किंग फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है। प्रीतम ने इसकी धुन बनाई, मयूर पुरी ने गीत लिखा, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान ने गाया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगले गीत के लिए अनुरोध भेजा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और सहिल, बिरडी से अनुरोध है हुकुम करमरकर का, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर का। जय गजानन रेडियो श्रोता संघ काप्स

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है न्यूज हेडलाइंस थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगी।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी नीदरलैंड यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है और दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है। उन्होंने जल संसाधन, सेमीकंडक्टर इनोवेशन, रक्षा, सतत विकास और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए नवाचार आधारित देश की समग्र विकास की यात्रा में दूरसंचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भूतशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भूतशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 का कल का जला हुआ कोच लूनी रिछा स्टेशन पर पहुंच गया। FSL की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और जांच कर रही है। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2-3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखे हैं। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा एक और विषय है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें, पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात। क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर। साथ ही दोस्तों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस पर। दोस्तों, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, जिसमें दूर संचार ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और उपग्रह संचार ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और तेज बना दिया है। इसी महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा की गई थी।

0: जिसकी स्थापना 17 मई सन 1865 को हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग बढ़ाना तथा डिजिटल असमानता को कम करना है। दोस्तों, दूर संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। पहले समय में संदेश भेजने के लिए पत्र दूतों का सहारा लिया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सुविधाएं दूर संचार की ही देन है। दोस्तों, सूचना समाज का अर्थ है ऐसे समाज से जहाँ ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान तकनीक के माध्यम से होता है। आज इंटरनेट ने शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं और व्यापारी ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथियों, यदि इंटरनेट और दूरसंचार सुविधाएं ना होती तो जीवन बहुत कठिन हो सकता है। हालांकि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, फर्जी खबरें, डेटा चोरी और इंटरनेट की लत जैसी समस्याएं समाज को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए तकनीक का उपयोग सोच समझकर और सुरक्षित तरीके से करना बेहद आवश्यक है। भारत में भी डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंच पा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। यह देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस आधुनिक युग में संचार और सूचना तकनीकी के महत्व को दर्शाता है। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।
1: हेलो,

0: देखो ना कैसा मौसम है।
1: आ जाओ ना।
0: ना बाबा ना, यही तो

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है हमारे आज की बात के अगले विषय विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है हमारे आज की बात के अगले विषय विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह रोग धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जिसमें रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। यह बीमारी हृदय, मस्तिष्क, आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो हृदयघात, स्ट्रोक, किडनी फेल जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों आज के समय में उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं। अत्यधिक नमक का सेवन, तेलीय भोजन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मानसिक तनाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक कारणों से भी ये बीमारी हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली में लोगों को शारीरिक रूप से कम सक्रिय बना दिया है, जिसके कारण युवाओं में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों का निःशुल्क रक्तचाप परीक्षण किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप के बचाव के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, फल, सलाद, कम नमक का उपयोग करना चाहिए। नियमित रूप से योग व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है। धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथियों पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक तनाव को कम करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। हमें स्वयं जागरूक होने के साथ साथ लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवाए। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा।

तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं।

हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है।

आप ये गीत। साथियों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात पर चर्चा करने का। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही। उनमें 7 बातें प्रमुख रही। पहली, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। विदेश यात्रा टालने की अपील की। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग पर जोर देने को कहा। खाद व केमिकल का उपयोग कम करने को कहा। स्वदेशी और मेड इन इंडिया पर जोर दिया। साथियों, पेट्रोल डीजल की कम खपत से हमारा ही फायदा है। यदि हम वाहनों का उपयोग सीमा में करें तो पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करने की सलाह भी उन्होंने दी। इससे पेट्रोल डीजल हम काफी हद तक बचा सकते हैं। साथियों, इससे न सिर्फ हमारा बल्कि पर्यावरण का भी बहुत फायदा होगा, अर्थात प्रदूषण कम होगा। दोस्तों, साथ ही इसके पीछे का एक और कारण विदेशी मुद्रा का बचाव भी है। दोस्तों, यदि आप पैदल चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभप्रद है। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारी आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके माध्यम से हम दूर बैठे लोगों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समाचार देख सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। मोबाइल ने जीवन को सरल और सुविधाजनक

बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग मोबाइल एडिक्शन अर्थात मोबाइल की लत कहलाता है। यह समस्या आज बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल के बिना बेचैनी महसूस करना और हर समय मोबाइल का उपयोग करते रहना। कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने तक इसका उपयोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो और चैटिंग ने लोगों को मोबाइल का आदी बना दिया है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालने लगी है। दोस्तों, मोबाइल की लत का सबसे बड़ा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द, नींद की समस्या होने लगती है। लगातार मोबाइल चलाने से गर्दन और पीठ में दर्द भी होने लगता है। साथियों, देर रात तक मोबाइल का उपयोग करने से नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी भी उत्पन्न होती है। साथ ही मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। कई छात्र पढ़ाई छोड़कर घंटों तक मोबाइल गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और परीक्षा परिणाम प्रभावी होते हैं। साथियों, मोबाइल की लत से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले हमें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। समय की सीमा निर्धारित करनी चाहिए और अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और गेम से दूर रहना चाहिए। बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मोबाइल उपयोग करते समय उन पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, मोबाइल एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका सही और सीमित उपयोग ही लाभप्रद है। हमें तकनीक का गुलाम बनने की बजाय उसकी समझदारी से उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ जीवन और अच्छे संबंध, उज्जवल भविष्य के लिए मोबाइल एडिक्शन से बचना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मीका सिंह और तरन्नुम मलिक की आवाज में। गीतकार है मृगदीप सिंह लांबा। संगीत निर्देशन है राम संपत का। फिल्म है फुकरे।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

माई फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज में। संगीत निर्देशन था नितिन आर शंकर का, शब्द रचना मनोज तफाड़िया की। अगला गीत सुनिए, सूरज जगन की आवाज, फिल्म है आत्मा, संगीत निर्देशन है सिद्धार्थ हल्दीपुर का, गीतकार हैं कुमार।

कमांडो फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी मयूर पुरी की, संगीत निर्देशन मनन साह का, आवाज थी राहत फतेह अली खान की।

दीवाना दीवाना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी बप्पी लहरी, सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की। गीतकार थी माया गोविंद, संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। लीजिए सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। अब से बस कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप भजन संध्या में सुनेंगे शिव भजन। कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल। शाम 6:30 पर लोकधारा में आज कलाकार हैं खुशी तिवारी। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे दीपक कुशवाहा, पेंजो पर जब्बार खान। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा कार्यक्रम में सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन। इसके अलावा भेंट वार्ता ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काम एक लाभ अनेक विषय पर डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव से बातचीत। रात्रि 8:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का और रात्रि 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा ग्रीन इंडिया मिशन। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। कल प्रसारित होंगे कार्यक्रम 6:35 पर सुनिए खेती किसानी में किसान भाई सुनेंगे जानकारी। विषय होगा पशुओं का प्राथमिक उपचार। 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर होगा भूपेंद्र सिंह का। 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम चिंतन। 7:20 पर हिंदी महक में सुनिए हिंदी काव्य पाठ, कलाकार होंगे अनवर खान। 7:30 पर और 8:47 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमे फिल्म संगीत में। 8:30 पर सुनिए धारावाहिक गीत गीता, शीर्षक होगा ज्ञान कर्म संन्यास योग। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे दीपक यादव, ढोलक पर संगत करेंगे दीपक कुशवाहा, बैंजो पर जब्बार खान। 9:30 पर एक ही संगीतकार के क्रम में कलाकार होंगे हिमेश रेशमिया। 10:00 आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिए सबरंग कार्यक्रम में भजन गजल गीत धुन मिश्रित संगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होंगे कार्यक्रम दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 स्वास्थ्य दर्पण और 1:30 पर लोक संगीत। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत और दिन में 2:00 फिल्म संगीत। 2:30 पर सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आपकी फरमाइश। शाम 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी छतरपुर से सुनिए शाम 5:00 युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें सुनेंगे वार्ता पर्यावरण संरक्षण, वार्ताकार होंगी सविता मिश्रा। शाम 5:40 पर आप कल सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:30 पर

0: धारा कार्यक्रम में आप सुनिए बुंदेली लोकगीत। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे फरमाइशी कार्यक्रम रमतोला। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा भेंट वार्ता भारत में प्राकृतिक कृषि का मुख्य धारा में समावेशन विषय पर डॉक्टर सागर नागवंशी से बातचीत। रात 8:15 पर आप सुनिए फिल्म संगीत। रात 10:00 फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। रात 8:00 आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। दिल्ली से प्रसारित होंगे कार्यक्रम। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5:58 होने को है। न्यूज हेडलाइंस थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगी।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि यह दिवस स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने, पौष्टिक आहार, योग और अनुशासन से तनाव मुक्त बने रहने के लिए हमें जागरूक करता है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखा है। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भजन संध्या। भजन संध्या में आज कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल। भजन संध्या में आज आप सुनेंगे शिव भजन।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

भजन संध्या में आज आपने सुनी शिवधुनी, कलाकार थी अनुराधा पोटवाल। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार हैं खुशी तिवारी। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे दीपक कुशवाहा, बेंचो पर हैं जब्बार खान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देवी गीत के साथ।

0: अभी आपने सुनी गारी। आवाज थी खुशी तिवारी की। ढोलक पर संगत कर रहे हैं दीपक कुशवाहा, बैंजो पर हैं जब्बार खान। और लीजिए अब सुनिए पारंपरिक लोकगीत एक अंतराल के बाद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सुगंध क्या हो रहा है?
8: बिल हो रहा है।
9: चल अपना कार्ड दे।

पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुना सोहर, आवाज थी खुशी तिवारी की। ढोलक पर संगत कर रहे थे दीपक कुशवाहा, बैंजो पर जब्बार खान।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: लीजिए अब सुनिए लेद। कलाकार हैं खुशी तिवारी, ढोलक पर संगत कर रहे हैं दीपक कुशवाहा, बैंजो पर हैं जब्बार खान।

इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ। लोक रंग कार्यक्रम में आज कलाकार थे खुशी तिवारी, इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे दीपक कुशवाहा, बंजो पर थे जब्बार खान। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

लीजिए अब सुनिए गुमशुदा सूचनाएं। पहली सूचना है, गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अर्चना कुशवाहा। इनका हुलिया रंग सांवला, नाक कान औसत, बदन इकहरा, मजबूत कद करीब 5 फीट, उम्र 33 वर्ष। पति का नाम गोविंद कुशवाहा, निवासी सब्जी मंडी गेट के सामने, जवाहर नगर, थाना कोंच, जनपद जालौन। इन्होंने गुलाबी साड़ी, हरे रंग का ब्लाउज, कांच की हरी और लाल रंग की चूड़ी पहनी है और नाक में पीले रंग की बाली है। जिस किसी को भी इनके बारे में पता चलता है, इन नंबर्स पर संपर्क करें। पहला नंबर है 9235040464। एक और नंबर लिखें 7983486530। नंबर एक बार फिर लिखें 9235040404।

6, 4। अगला नंबर है 7, 9, 8, 3, 4, 8, 6, 5, 3, 0।

0: अगली सूचना है, गुमशुदा व्यक्ति का नाम है नीरज कुमार सोनी, उम्र 32 वर्ष है, इनके पिता का नाम है रामस्वरूप सोनी, निवासी ग्राम पिरोना थानाएट जिला जालौन उत्तर प्रदेश। इनका हुलिया नाक कान कद औसत, रंग गेहुआ, लंबा चेहरा पतला बदन, लंबाई 5 फीट 5 इंच। इन्होंने हरे रंग की शर्ट, काले रंग का पैंट, सिर पर सफेद रंग का गमछा लगाया है और हवाई चप्पल पहनी है। जिस किसी को भी इनके बारे में पता चलता है इन नंबर्स पर संपर्क करें। नंबर है 8839114683। अगला नंबर है 8953434645। एक और नंबर लिखे 9454401431। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पार्टी चाहिए,
7: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
6: इस पार्टी ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
6: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

भारतीय प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में

0: में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु, भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में वाघ देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। आज विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य बार जैसा बना दिया है, जीवन सहज हुआ है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि तनाव, अनियमितता और असंतुलित भोजन उच्च रक्तचाप और बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं पहल करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या मायगांव ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 12431 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने डिब्बों में अग्निशमन प्रणालियों की जांच का काम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के सांची में एक निजी रिसॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 में शामिल हुए। उन्होंने यहां लगाई गई विकास व वैचारिक प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
3: कम विधम में दुनिया का भय भला नहीं किया, रोटी भी नहीं मिली, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी चली गई। अमेरिका जैसे देश आए, हमारे एक हाथ में रोटी है, एक में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि भारत जिस पश्चिम के पीछे आंख बंद करके दौड़ रहा है, क्या वो पश्चिम सुखी है? तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जरा अपने देश की तरफ भी तो देखें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। जो हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम राष्ट्र समाज जीवन की रचना करके देश को सुखी बना सकें, लोगों का कल्याण कर सकें।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। सीहोर में आज अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुना जिले में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग

0: उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। जनगणना का कार्य मध्यप्रदेश सहित आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 10वीं के आधार पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। खंडवा में जनजातीय वर्ग के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान कल से शुरू होगा। सीहोर शहर की जीवनदायिनी सीवन नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए नागरिकों ने नदी बचाओ अभियान शुरू किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज बैतूल में बाजार की जीवनदायिनी सापना नदी के भवानी घाट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब ग्रामीण भाई सुने उनका पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनवे वाले सभी भैया बहन खां किसु भैया की राम राम पंचो। आज है विश्व हाइपर टेंशन दिवस यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। जो दिवस भैया हर साल है 17 मई को मनाया जाता और इको उद्देश्य है कि लोगन को हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करवो है। इको केवबीर भैया साइलेंट किलर कहो जात। इके लक्षण आसानी से पतो नहीं चलत। और भैया ई दिवस को महत्व और उद्देश्य जो है कि एक तो जागरूकता बढ़ावो। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग हाई बीपी से पीड़ित हैं और भैया उनमें से केवखो खुद की स्थिति के बारे में पतो नहीं पड़त। दूसरो भैया नियमित जांच करावे के लाने आज को दिन प्रोत्साहित करत। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से दिल को दौरा और भैया किडनी खराब होवे को खतरा बढ़ जात। इके नियंत्रण के लाने भैया कम नॉन खाएं, नियमित व्यायाम करें और वजन को संतुलन बनाए रखें। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करवा उतराए और भैया संगे संगे योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव को कम सो करत रहने। इसे भैया हमारे जो पंच हैं वे ई हाई

0: टेंशन बीमारी से बच सकत हैं। और भैया देखो, भत्काओ तो अपन पंचन से करत रहे हैं, लेत हैं तनक्सो विराम।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: विराम के बाद फिर पंचन को स्वागत है। और देखो भैया, आजकल अपन देखत हैं कि हमें देश विदेशन में भैया बातचीत करबो कितो आसान हो गो, और जो सब दूर संचार के माध्यम से हो पाओ। सो आज देखो विश्व दूर संचार दिवस सो है, जो हर साल 17 मई का मनाओ जात। और भैया जो दिवस डिजिटल तकनीक के महत्व, संचार में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ 1865 में स्थापना की याद दिवाऊ। और भैया इको उद्देश्य इंटरनेट और नई तकनीक तक पहुंच खो आसान बनावो है। आज को दिन भैया डिजिटल विभाजन को कम करवे और लोगन में इंटरनेट की भूमिका को उजागर करवे के लाने समर्पित है। स्थापना की अगर बात करें तो 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पे दस्तखत करे गए थे। इसके बाद ITU को गठन भाव। अगर पंचो उद्देश्य की बात अपन करें, विकासशील देशन में दूर संचार के विकास को बढ़ावा देवो और सबई के लाने डिजिटल तकनीक को सुलभ बनावो है। भैया बतकाओ तो होते ही रहे, लेते हैं तनक सो विराम।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: पंचन को भैया फिर स्वागत है कार्यक्रम में। पंचो कई जात आंख है तो जहान है, नहीं तो सब वीरान है। पंचो इतने बड़े शरीर में आंख एक ऐसा छोटो सो अंग है, लेकिन भैया ई के ना होबे से सबई कोद अंधियारो है। इसे हमें अपनी आंखन की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहबो बहुत जरूरी है। आज के ई आधुनिक युग में अपन देखत हैं कि राई राई बाल गोपालन की आंखन में चश्मा चढ़ गए। पंचो आंखन की देख रेख के लाने अपन को टीवी मोबाइल से दूरी बनाए रहने, बाहर निकलती बेरा धूप को चश्मा लगाने, पौष्टिक आहार जैसे हरी पत्ता दार सब्जी, पालक, खट्टे फल, मछली को सेवन अपन करत रहने। इसे भैया अपनी आंखन की रोशनी बढ़ जात और घर के कोनों में ऐसे काम जी में हमारी आंखें असुरक्षित रहती, ऐसे काम चश्मा लगा के ही अपना करने हैं। पर्याप्त नींद लेबो भी बहुत जरूरी है। अगर आंखन में कछु चलो जाए तो भैया हाथ से नहीं मल लें, पानी को कंछा मार के आसानी से अपना कचरा निकालने। और भैया अगर रसोई में हमारी माताएं बहने खाना बनाती बेरा ई बात को ध्यान दें कि गर्म तेल के छींटा आंखन में ना पड़े, इसे अपनी आंखन का जरूर बचाओ ने। और समय समय पे भैया डॉक्टर भैया की सलाह सो अपन लेत रहने। भैया देखो आज है इतवार और अपन सुनते हैं आज धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 4।

0: चटकन
1: हाटकन भैया,
0: हमने सुनी है कि जोन कलेक्टर साहब खान आने हतो ना सुबह, अब नहीं आ रहे।
1: अरे
0: हाँ, और अब दो चार रोज में विधायक जू खान जरूर आओने।
1: अच्छा अच्छा,
0: सो एक काम करो कि सबरू काम तो धरो अपने मुंह ने देखो।
1: हो
0: सो चलो सरपंच साहब लो हो आइए कि हमें अब पहले काका करने।
1: हो चलो चलिए अटकन भैया, अकेले कलेक्टर साहब खां काय नहीं आने? अपन तो कहते के हम सब अधिकारियन खां अच्छी तरह से यहाँ जानते ही, कलेक्टर साहब खां, कमिश्नर साहब खां, सब खां अच्छी तरह से यहाँ जानते ही है, फिर अपनी बात नहीं मानी का उनने?
0: अरे चटकन
1: हाँ,
0: अब कलेक्टर साहब खां पूरो जिला भर नहीं देखने।
1: हो जो तो सांसी
0: है, सरकारी काम काज आए,
1: कहूं
0: और जरूरी काम आ गए हुई है।
1: अच्छा,
0: सो
1: अच्छा।
0: उते जाने हुई है उन्हें।
1: और
0: फिर हमने कहा चटकन जो कहती तुमसे कि हम उन्हें अच्छी तरह से जान रही थी, जो तो न कहती कि भाई हमें अच्छी तरह से जाना थे।
1: अरे अटकन भैया, आज तो सरपंच साहब ओ काकी दो ही जने बाहर दालान में बैठे मुंह फुलाए,
0: हाँ,
1: कछु न कछु बात तो है। अरे सरपंच साहब, राम राम।

0: ए अटकन चटकन,
1: हाँ
0: पहला हमसे न करो राम राम, काकी से करो।
1: अरे
0: आजकल औरतें भलाई 70 साल की हो जाएं, अकेले जब उनसे उम्र पूछो सो 27 28 से ज्यादा की कभू नहीं
1: अरे साच गई
0: बताऊती।
1: तेरे को साच
0: उन्हीं
1: गई।
0: को है चरचराटो।
2: देखो देखो कल्लू के दद्दा, मैंने अबे लो बहुत सुन ली, तुम्हारी बहुत सुन ली। अब मैं ये कहूँ ना सुनो बिल्कुल, जो मैंने कह दई मुंह बंद राखियो बिल्कुल, नहीं तो जी लड़का बारे सब छोड़ छाड़ के ना माए के चली जी। हाँ फिर पाछे पाछे फिरियो।
3: अरे काकी, सरपंच साहब सही है कात के पहला काकी से करो करे राम राम। अरे तुम तो रोज रामानो ही बाजती, पतो नहीं है कि सबसे पहले सबको जब राम राम कर तो सीताराम राधे श्याम पहला देवियन को नाम लेत के नहीं लेत।
1: का है सरपंच साहब, बात का है जो आज दो जन में तू तू मैं हो रही, हम देख रहे मुंह फुला में बैठे अपन, का है?
3: हल्ला ना कर चटकन,
1: भैया
3: नहीं कर
1: अटकन
3: तू तू कर है काकी और मैं छिनियन घाई कर भी हम तुम।
0: अरे
1: सही कही
0: भाउजो,
1: अपन।
0: कि एक आओ कबाड़ खरीद बेवारो कबाड़ी,
1: अच्छा,
0: सो दूर उन नीम तरह ठाड़ो हतो।
1: ठीक।
0: सो काकी बोली कि देखो तो कबाड़ी का मुए कोद कैसे घूर घूर के देख रहो, तो
1: अरे
0: मुंह से कछु कह का ही नहीं रहे।
1: सो अपन खा उ खा बोला के तना खिसिया देने तो भाव रे,
0: आओ,
1: काय हक देख रहे
0: अरे
1: हो।
0: अटकन चटकन, मैंने तुम्हारी काकी से कही कि तुम ठहरी बूढ़ी ठेली,
1: अरे
0: तुम्हें वो लड़का का देख है, ऊ आए कबाड़ी, सो कबाड़ ना देखे तो का देखे।
2: काकी
3: काकी मौंग जाओ राम राम, मौंग जाओ
2: बेटा,
3: मौंग जाओ
2: तुम ही देख लो बेटा,
3: काकी
2: तुम ही
3: मौंग तो जाओ
2: देख
3: तुम।
2: लो।
3: अरे सरपंच साहब तो हंसी में आ कह रहे हैं, सही तुम जो नहीं जानती कि हंसी में कह रहे। मैं देखा तू कबाड़ी खा कहाँ गा कबाड़ी, चलो चटकन ता देखिए
1: ढूंढ के
0: काय।
1: रखू
0: अरे अटकन, हमें है पतो ऊ काया देख रहो हतो।
1: काया देखा तो सरपंच साहब तरह मैं ही जानू।
0: इसे कि आजकल कबाड़ में बम राकेट और मुलक्की विस्फोटक चीजें नहीं मिल रही,
1: हाउ हाउ पड़ी तो हती
0: सो
1: मैंने।
0: उन्हें सोची हुई है कि काकी तो खुद बम से कम नहीं है, इनसे अच्छी विस्फोटक चीज और का हो
2: का? अरे मैं तो मैं बम जैसी
3: काकी। अरे सुनो तो तुमने बम भोला को नाम नहीं सुनू। अरे बम भोला को तो ओई बम भोला को बम मा कही उनने सरपंच साहब ने, कछु और नहीं कही उनने।
2: अच्छा तो ठीक है, कम से कम इन्हें भगवान को नाम तो लाओ। जोलो तुम औरे ना आए हती ना, सो जाने जे का काट को सट बतात रहे,
1: अरे
2: अब बम भोला को नाम ले लगे हैं। कम से कम चलो इन्हें बम भोले को नाम तो लाओ है। चलो हमसे नहीं कही माने बम, चलो तो ठीक है।
1: काकी अब हम और आने आई से फिर रहे, चाय पानी तो आपे कछु मिलो ही नहीं है।
2: चाय पानी
1: हाँ।
2: मैं तो पहली से जानती कि जे अटकन चटकन आए, चाय पानी तो ठीक ही है, बिना खाए पिए टर है का जीते से। सो मैं चाय बनाए दी ठीक है,
1: हाँ।
2: और मैं तो देखो माए के जाबे की तैयारी में लगी थी, सो ठडूला लुचाई सब धरी बनी बनाई। सो अभी ले आओ तुम्हें, बैठो अभी मैं खवा रही, बैठो
1: आज
2: बेटा।
1: तो अटकन भैया चकाचक है काम।
0: जो तो ठीक है,
1: हाँ
0: काल आ रहे विधायक जू।
1: अच्छा,
0: सो गांव की सफाई सफाई तो हो ही गई।
3: सरपंच साहब सब पूरे गांव भर ने अपने अपने घूरी फेंक दे, अकेले वो घोटाई सेठ नहीं है अठाई मेरा जोन,
0: हाँ
3: ऊ को ज्यो को त्यो लगो दिखा, सुनते ही नहीं है वो सब यार।
1: एक दो बेर तो मैं तुलसा से किया सो आजकल करत रात अकेले अपना घूरो नहीं फेंकवाओ।
0: सुनो
1: हाँ।
0: आज फेरोते हो आओ,
1: हाओ हाओ
0: और तनक कर रहे हो के कहियो,
1: हाओ सरपंच साहब
0: कि पंचायत की तरफ से पूरे 500 को हुई है जुर्मानो अगर आज रात रात लोग घूरो ना फेंको तो।
3: अरे कह सरपंच साहब अगर उन्हें तो ना फेंको तो।
0: अरे तो का, सो पंच जोर के दो चार मजूर लगवा के फेंकवा दो जे है, उसे पैसा ले जे है, और सुनो उनकी दुकान से कोई सामान न ले है।
1: हाउ हाउ हाउ आज अवन जात हम तो सरपंच साहब अटकन भैया
3: हाँ।
1: चलो चलिए अवन
3: बिल्कुल आज जो काम हो ही जाए
1: बिल्कुल सरपंच साहब ने अपन से कही दी
0: हाँ अटकन चटकन
1: हाँ।

0: एक काम और करने,
1: कैसो
0: विधायक जुआ है सो मोए तो जो भाषण आसन आप ही नहीं है। अब तुम दो ही जने कोनो विषय पे या गांव के विषय पे भाषण सूत तैयार कर लियो कि का बोल लें।
1: अरे सरपंच साहब, शुरू में और आखिरी में तो हम ही बोल दे अभी, और जे जो अपने अटकन भैया हैं,
0: हाँ
1: तो ये तो गांव के विषय में कम से कम एक आध दो घंटा तो बोल ही सका।
0: नहीं जो तो है
2: ले जा है चाय और लुचाई ठड़ूला, सुनो बैठ के खा लो अच्छी तरह से। काय का कह रहती भाषण देवी की लाने, काय अटकन गांव के विषय में घंटे दो घंटा बोल सकत तुम बस। अरे मुझे तो देखो ई उम्र में ही मैं अबे इतनी हिम्मत राखत कि कौन विषय होवे चाहे ना होवे मैं दिन भर धड़ाधड़ भाषण दे सका तू था।
0: अरे भगवान ये ठड़ूलन में नॉन ज्यादा डार दो तुमने, काय अटकन चटकन।
1: हाँ सरपंच साहब
0: है कि नहीं
3: हम नहीं कह सकते
1: चटकन।
2: बस बस बस चलो रांदो रांदो, कौन जा आज नई बात आए। तुम तो जब देखो जब कोनो ना कोनो मीन में एक नकार बे के दम में आदसिया पर गई। हमेशा जब भी कछु चीज बना हुए कभू तुमने नौने मन से खाई है आज तक? यही से मैं दिन भर अपनो बनाओ खाना भिखारियन को खवा उतरा जे सूखी दारे रोटी पाऊती से मुंह से। मैं और कछु नहीं ना देख
3: काहे काकी
2: खावे के लाने।
3: अरे काकी
2: हाँ
3: तू भिखारियन खा काहे खा खवाउती जाती सेहत में इतमे। अरे पूरा मोहल्ला में और कोनो नहीं मिलत तुम्हें का?
2: मिलत काहे नहीं है, खूब मिला तुम वो तो अकेले जी खा खवाओ ना सो वही कछु न कछु कमी करत रह। अरे काकी में मिर्चा ज्यादा है, ई में नॉन ऐसो है, जो ऐसो बनो जो ऊसो बनो सो मैं तो तंग ही आ गई इनको खवा खवा के। और बेचारे भिखारी कछु लो नहीं का चुपचाप खा लेत रात और खा के आशीष दे के वो चले जाते। सो मैं तो उन्हीं को खवा दी।
3: अच्छा सरपंच साहब तब हम और जाइए ना घुटन सेट लो।
0: हाउ हाउ जाओ और सुनो फिर बताओ हमें कि का भाव।
1: हाउ हाउ हाउ जय थे राम राम काकी
2: राम राम राम राम राम बेटा हरो राम राम अच्छे से जाइयो।
1: हाउ का हो रहो तुलसा, सेठ जी घरे में हैं के नैया?
4: आओ हटकन चटकन भैया, दद्दा परे बुखार में।
1: अच्छा।
4: उन्हें बुखार आ रहो।
1: हाँ हाँ।
4: सो ऊ तो टूट गयो, अकेले कमर और दांत भर बहुत पिरात, का बताई।
1: अरे जब इतो बड़ो बुखार टूट गयो तुलसा तो कमर और दांत टूटत में कितनी देर लगने, भगवान की कृपा से बे टूट जाए।
3: अरे तुलसा जो चटकन तो ऐसे ही चटकन करते ही रहा।
4: सही है कह रहे हैं।
3: अब जो बताओ के दद्दा ने दांतन की दवाई यवाई नहीं करवाई कछु का?
4: अरे अब का बताइए अटकन भैया, दद्दा गए हते दांतन के डॉक्टर लो। सुबह बोले कि तुम्हारे दो दांत उखाने पर हैं।
1: ठीक है
4: 10 मिनट को काम है बस। सो दद्दा ने पूछी कि फीस कितनी ले हो? सुबह बोले 150 रुपया।
1: अच्छा।
4: सो दद्दा बोले कि 10 मिनट में उखरावे की 150, अगर 5 मिनट में उखार दे हो तो 75 लगे और 2.5 मिनट में उखार दे हो तो 33.5।
1: अच्छा।
4: सुबह हिसाब ही लगा उतरे गए कि डॉक्टर के चपरासी ने उन्हें बाहर पकड़ के निकाल दिया। तो बेचारे भागे आए।
3: जो तो ठीक है तुलसा।
4: हाँ।
3: अकेले जोन जो बगल में घूरो लगू हुआ बेलोनी फिकू, इसे तुम्हें का फायदा है घूरे से जो बताओ?
4: अटकन भैया दद्दा कहते कि बहुत फायदा है।
3: अच्छा काका फायदा है?
4: देखो घूरो लगो सुहोत बड़े बड़े मछरा और ई मछरन की बदौलत कोनो रिश्तेदार नहीं आउता और जो न आउ सुबह घंटा दो घंटा में ऐसे भगत कि फिर आने की नहीं सोचता।
3: कहे तुलसा जब तुम्हारे दद्दा इतने कंजूस हैं तो कभू दान तो कहते ही ना हुए वे सब यार।
4: अरे जो कैसे कह दई, हमारे दद्दा तो कान लगाए कि सब दानन से बड़ो मत दान हो, सुबह हर वेर वही करे आओ।
1: काय तुलसा तुम कब से नहीं गई मतदान कर भी, गई कब हूँ की नहीं गई?
4: अब गई तो हर वेर हूँ, अकेले वोट डार भी आलो नहीं मिली।
1: अरे
4: जैसे ही मैं गई सुबह कान लायत के चलो चलो अब टाइम पूरा होगा।
3: चटकन हम बताए ना बताए अपने मुँह से
1: काय काय।

0: एने की बात नहीं आ जितनी बाई हरे हैं सुबह इतनी सजती ती सजती कि जब एक चुनाव के वोट डार बिकलाने होने जाने आऊ तो सज वो चालू करती वे।
1: अच्छा।
0: और जो लोग दूसरो चुनाव होने लगा जो लोग सजते ही जाती वे
2: ऐसा नहीं है।
1: जो तो सब ठीक है जो घूरो फेंकने के नहीं जो बताओ तुम आज हमें तुलसा
2: ऐसो है अटकन चटकन भैया।
1: हाँ।
2: घरे को काम काज करवे बारो है नहीं है, है? सुमे दाएं देत पैसा
1: हाओ
2: अपने ही और हैं कोनो मजूर तलाश के फिकवा दो
0: जो ठीक
2: तुम और तो मुरे संगे पढ़त रहे
1: हाँ।
2: सु घरे के आओ ऐसे तो कछु है नहीं है लियो जी लो 200 रुपया काम पड़े तो और दे दे हमें और गांव भरे के घूरे फेंक गए सो मैं तो खुद ही सोचती कि जो फेंक जाए बहुत बुरा लगा सो जी ले लो पैसा और तुम्हें ही करा दो
0: चटकन धल्लू कहे तो सके काल आओने विधायक जूखा।
2: अच्छा
0: सो जो आज फेंकबो बहुत जरूरी है रात रात लो। और एक बात और है कि जोन गांव सबसे साफ सुथरो होत सो ओते की और विकास के लाने सरकार से लाखन रुपया मिलत लाखन
2: का कही अपन ने काल विधायक झुका होने तो मैं सोई चल हूँ देखो तुमरन के संगे गांव के विकास के लाने उनसे चर्चा सोई कर हूँ और मैं भाषण सोई दे हूँ देखो मैंने कह दे
1: बिल्कुल तुलसा अपन खा महिलान की तरफ से पूरी चर्चा करने महिला उत्थान के बारे में
0: हाँ।
2: मैं तो चल हूँ दद्दा तो बहुत ही डरा एक दिन कावा अटकन भैया
0: हाँ।
2: के घर पे चढ़ी बिलैया
0: अच्छा।
2: रात के
1: हाँ।
2: सुबाई ने जानू के कोनो चोरान घुसो सोन ने दद्दा का जगाओ हरा के कि उठो उठो घर में चोर घुसी बिना उठे उसे यूं करत रहे सुबाई बोली कि तुम कैसे पति आओ जो उठत नहीं है मैं जब से बुला रही
1: हाँ,
2: दद्दा बोले के भगवान मैं तुम्हारा पति आऊं उस चोर को नोई जब चार शांत होके पड़ रहा।

0: देखो भैया रो, अबे अपन सभी जने सुन रहे थे धारावाहिक अटकन चटकन को भाग चार। और भैया अब ले चलते हैं अपने पंचन खां एक भेंट वार्ता कूद और सुनवाऊ थे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काम एक लाभ अनेक विषय पे डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव जी से बातचीत।
1: हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। पंचो भैया हरो, अपन समय समय पर अपने खेती किसानी के लाभ के लाने विषय विशेषज्ञ सो बुलाऊ थे और आज अपने बीच में आए हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव जी। अपन कृषि वैज्ञानिक हैं और आज अपन बताएं ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काम एक और लाभ अनेक अपन जानकारी दे हैं। तो डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहले अपन जीव जानो चाहे जब ग्रीष्म काल की गहरी जुताई होते ई के बारे में अपन अपने पंच भैया ना बताओ।
2: देखो ग्रीष्मकालीन की जो गहरी जुताई होती है इसमें क्या रहता है कि अपन गर्मी में मट्टी को पलट देते हैं गहरी तरीके से। जैसे अपन एमबी प्लाउ से 29 से 31 सेंटीमीटर गहरी तक अपन जब पलटते हैं मिट्टी को तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। और जो अपन नॉर्मल कल्टीवेटर से अपन करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 27 सेंटीमीटर होता है और इसका सही समय रहता है अप्रैल से मई के बीच में।
1: अब डॉक्टर साहब जब गहरी जुताई होत कैसी है कितने सेंटीमीटर लो अपने भैया बहन खा जा गहरी जुताई करो चाहिए अपन बताओ।
2: देखो ग्रीष्मकालीन जुताई जो है ये फसल कटने के बाद होती है। जब अपने जो फसल है उसमें जैसे आप कोई भी फसल लगाए गेहूं लगाए तो गेहूं के जो ठूट वगैरह बच जाते हैं इसको जब अपन पलटते हैं तो वो एक तरीके से खाद का काम करते हैं। आने वाली जो अपनी फसलें रहती हैं उसमें खाद आपको कम डालनी पड़ेगी। दूसरा जो कीट का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं आप। जैसे आपने मिट्टी पलटी तो जो गहरी मिट्टी में जो अपने कीड़े बैठे रहते हैं उनके अंडे बैठे रहते हैं वो जैसे ही पलट के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। और दूसरा इसका रहता है कि गहरी जुताई जब आप करोगे तो इसमें क्या रहता है जब मिट्टी फुसफुसी होती है उसमें क्या रहता है पानी स्टोर आसानी से हो जाता है। ऐसा माना गया है साइंटिफिक रिसर्च में जब अपन एमबी प्लाव से गहरी जुताई करते हैं तो उसमें 31% ज्यादा पानी स्टोर होता है उसकी तुलना में जो अपन नॉर्मल जुताई करते हैं।
1: देखो पंच भैया कितनी महत्वपूर्ण है ग्रीष्म काल की यानी अपनी गर्मियन की अभी जो समय चल रहा है मई को अपन समय कहें तो इनमें गहरी जुताई को बड़ा महत्व है अपन सबका।

0: बताओ जाइए, अब अपन जो सो जानो चाहे, जब ग्रीष्म काल की गहरी जुताई है, जब कितने साल में अपने पंच भैया करें जिससे उन्हें माटी में अधिक से अधिक लाभ मिल जाए।
1: ग्रीष्म कालीन की जुताई जो है, हर साल जब भी गर्मी आती है, जब अपन दो फसल ले लेते हैं, उसके बाद हर साल करनी चाहिए जुलाई से पहले, ताकि मिट्टी को भी एक आरामदायक मिले, और उसमें भी जैसे अपन पंखे वगैरह में बैठे रहते तो अपन को भी हवा चाहिए रहती है, ऐसे मिट्टी भी है ना दब जाती हैवी मशीनरी की वजह से और प्लांट पौधों की वजह से, तो उसे भी एक खुला वातावरण मिलेगा, जिससे अपने जो किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जो मिट्टी में पनपने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ेंगे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया बहन हरो, जब अपन ने डॉक्टर साहब से पूछी तो उन्होंने कितनी उन्होंने जानकारी दी कि कितने साल में अपन करने, माने कई पंच भैया जो सोचत के तीन साल में अपन कर दो या दो साल में मिट्टी का पलट दो, लेकिन हर साल अगर अपन फसल लेवे के बाद करें तो इसे अधिक लाभ अपन मिल सकते हैं। अब डॉक्टर साहब अपने पंच भैया जो जानो सो चाह रहे होंगे कि ग्रीष्म काल की जो गहरी जुताई है इके हमें का का लाभ होते हैं, अपन बताओ दे।
1: ग्रीष्म कालीन के देखो, पहले तो आप प्रत्यक्ष लाभ मतलब अपन को जो दिखाई देते हैं उनकी बात करते हैं, कि गहरी जुताई से क्या होता है, मृदा के भौतिक गुण रहते हैं उस पे प्रभाव पड़ता है। भौतिक गुण कैसे, कि जैसे उसमें मृदा में पानी ज्यादा स्टोर होगा आपका, उसके कम घनत्व में ज्यादा मिट्टी के कण आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें है ना कोई भी निवेश प्रतिरोध क्षमता भी होती है। दूसरा आता है हानिकारक कीटों से बचाव होता है, जैसे अपन परंपरागत जो जुताई करते हैं उसकी तुलना में गहरी जुताई में धान में 3.3% ज्यादा आपको यील्ड मिलेगी, गेहूं में 9% ज्यादा यील्ड मिलेगी
0: जी,
1: टमाटर की खेती करोगे तो उसमें 16% ज्यादा यील्ड मिलेगी, जो आपको नॉर्मल आप जुताई करते हो उसकी तुलना में। और दूसरा आता है जो भी आपके खरपतवार रहते हैं, जो वीड वगैरह रहते हो, उनको भी नियंत्रण करने में आसानी मिलेगी। कैसे, जब आप गहरी जुताई करोगे तो आप गर्मी में उसे पानी तो मिलेगा नहीं,
0: बिल्कुल नहीं मिलेगा,
1: और जैसे ही आपने मिट्टी में पलटा उसकी जड़ ऊपर आई तो सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो फिर आगे आने वाले सीजन में वो उग नहीं पाएगा। इससे क्या है, 20-90% जो अपने खरपतवार है वो कम होते हैं, और मृदा में वायु संचार बढ़ता है, जिससे अपन क्या करते हैं, जैसे उस मृदा पे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रॉली चला रहे हैं, आजकल हार्वेस्टर का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हार्वेस्टर में कितना भारी वजन रहता है, जब वो मिट्टी के ऊपर चलेगा तो मिट्टी दबती है, तो आने वाली फसलों के लिए वो मिट्टी में हवा का संचार होगा तो आसानी से जड़े उसमें जड़ ज्यादा होगी, अच्छे तरीके से जड़ पोषक तत्व ले पाएंगे तो पौधा अपना आसानी से फैलेगा, जड़ के विकास में सहायक होता है, मृदा संरक्षण में सहायक होता है।
0: बिल्कुल, देखो कितने महत्वपूर्ण लाभ हैं खासकर ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई की। संगे संगे अपन जो सो बताऊती कि इनमें उत्पादन में कैसे वृद्धि होत है और अपनी जो मिट्टी है जब रोग मुक्त भी हो जात है, तो इके बारे में सो बताऊते जो अपने भैया गहरी जुताई कराउत है, कई पंच भैया नहीं भी कराउत है, तो उन्हें जो बताऊते कि कितनी जरूरी है जो गहरी जुताई करबो खासकर गर्मियन के समय में।
1: उत्पादन में आपके जैसे आप मान ले, जैसे अभी बताया गया कि उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी, जब आपका पौधे की जड़ आसानी से फैलेगी तो फैलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व अपने अंदर लेगी, तो पोषक तत्व जब आप मान लो, आप उदाहरण के लिए आपके यहाँ जैसे भैंस पली हुई हो, घर में दूध आप पीते हो, दो गिलास अगर घर की भैंस रहेगी तो दो गिलास ज्यादा दूध पी लोगे, ऐसे वहां पे है कि आप आसानी से पोषक तत्व जब ले पाओगे तो आसानी से फ्रूट भी बनेंगे उस पे, फसल पे फल भी ज्यादा लगेंगे, और फल ज्यादा लगेंगे तो अपन को तो फल ज्यादा आएगा, तो मतलब यील्ड अपनी बढ़ेगी, उत्पादन अपना बढ़ेगा। दूसरा, मृदा में का जो वायु है उसमें जब वायु बढ़ेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अपने मृदा को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट आसानी से ग्रो कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में केचुए बहुत ज्यादा मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। इसके एक वजह यह भी है कि अपन है ना पहले ये सब काम केचुए कर देते थे, नीचे से ऊपर मिट्टी पलट देते थे, अब वो बचा नहीं केचुए, तो अपन को अब मैकेनाइजेशन के थ्रू अपन को करना पड़ेगा, मशीनरी के थ्रू ये सब चीज करनी पड़ती है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, खासकर गर्मियों के दिनों में जो अपन मिट्टी पलटने की बात कर रहे हैं, इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने किसान भैया के लाने कौन कौन से लाभ होते हैं जिसे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो पाए, तो अपन के बारे में सो बताओ।
1: अप्रत्यक्ष रूप में जैसे रहता है, जुताई से आपका उपज में इजाफा होता है, अनुसंधान में देखा गया है कि गहरी जुताई में जो फसल की उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये अनुमानन कम से कम 10-25% तक वृद्धि मानी गई है। रासायनिक उर्वरकों के जो खर्चा है उसमें कमी आई है, 50-55% जो आपका रासायनिक उर्वरक है उस कम लगते हैं। तीसरा, नाइट्रोजन का मृदा में संरक्षण होता है, जो अपना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका मृदा में राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू संरक्षण होता है, जिससे आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है। तीसरा है, खरपतवार में नाशी जो रहता है उस जो अपन दवाई डालते हैं उसके प्रति, आजकल आपने देखा होगा किसान भाइयों ने कि अपन दवाई

0: छिड़के आ जाते हैं, फिर भी खरपतवार मरते नहीं है, तो एक प्रतिरोधी क्षमता उनमें विकसित हो गई है। लेकिन ये देसी तरीका है, इसमें कोई प्रतिरोधी क्षमता किसी भी खरपतवार में विकसित हो ही नहीं सकती।
1: डॉक्टर साहब, और चला चला तो अपने पंच भैया नहा जो सो बताओ, ग्रीष्म काल की जो गहरी जुताई है, जब खेती को देखो कितना महत्वपूर्ण काम है, और संगे संगे देखो खेत की उर्वरता तो सो बढ़त है और कीट रोग भी कम हो जाते हैं जिससे जल को संरक्षण होते, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में वृद्धि होते। तो अपने पंच भैया ग्रीष्म काल की गहरी जुताई करवाएं और समय रहत करवा लें ताकि उन्हें पर्याप्त गर्मी मिल जाए, माने जो मौसम को पूरा पूरा लाभ उन्हें मिल जाए, तो उनका कछु सलाह दो चाहो।
0: उसमें ये रहता है कि जैसे आप ग्रीष्मकालीन में 9 से 12 इंच गहरी जुताई करवाएंगे, उसके बाद ये गर्मी से पहले ढलान वाली जो जगह है उसकी विपरीत दिशा में करवाना है।
1: जी जी
0: तीसरा है, हल्की और रेतीली जमीन में ज्यादा जुताई ना करें। क्या रहता है, गर्मी में लू वगैरह चलती है, आंधी वगैरह चलती है, उससे मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है, जो मिट्टी भारी रहती है उसमें ये करवानी रहती है। और दूसरी बात, जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊंची मेड़ बना दें, थोड़ी ऊंची मेड़ बना दे, जिससे जो आपकी ऊपर की मृदा रहेगी वो किसी और खेत में ना जाएगी। यही मेन मेन चीजें रहती हैं।
1: बिल्कुल, अपने किसान भैया बहन के लाने का कछु संदेश अपन दो चाहो, अपने भैया ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करें और अपनी मिट्टी की उर्वरता सो बढ़ाएं, का कछु संदेश अपन दो चाहो।
0: ये ग्रीष्मकालीन जुताई यह बहुत अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या रहता है कि किसानों को एक तरीके से अपनी आय बढ़ाने का और अपने जो जितने भी आपके जो रिसोर्सेस लगते हैं, जैसे दवाई हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, और भी जो चीजें, ये कम रिसोर्सेस में आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सकते हो। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक लक्ष्य है, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, यही उसका एक तरीके से उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल, तो देखो भैया बहनों, ग्रीष्म काल की गहरी जुताई काम एक और लाभ अनेक, अपन जानकारी दे रहे थे महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव जी। अपन निश्चित रूप से ये गर्मी के मौसम में अपनी अपने खेतन की गहरी जुताई शुरू करें और सीधो सीधो अपन लाभ इसे मिले। तो डॉक्टर साहब अपने बीच में आए, अपन ने इतनी नोनी जानकारी दी, अपन का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम डॉक्टर साहब।
0: राम राम।
2: देखो भैया हरो, अभी अपन ने सुनी एक भेंट वार्ता ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काम एक लाभ अनेक विषय पे डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव जी से बातचीत। और भैया देखो, अब मेरा भाई है आज की सीख की विषय है, जौन गांव में रहिए वही जैसी कहिए, ऊंट बिलैया ले गई सो हाजू हाजू करिए। एको भैया अर्थ है कि जौन जांगा या जौन समाज में रहने हुए उते की भैया रीति रिवाज और ताकतवर लोगन की हाँ में हाँ मिला वो आओ चाहिए, चाहे भी भैया बेतुकी और झूठ काय न बोलत हो। जब अपन कोनों से दब के रात या ताकतवर व्यक्ति के इलाके में रात, तो भैया अपनी सुरक्षा के लाने उनके गलत फैसलन को भी विरोध न करो चाहिए। समझदारी मानी जा भाई जब अपन उको विरोध न करें, विरोध करवे पे भैया नुकसान हो सकत है, इसे भैया चुपचाप हाँ में हाँ मिला के अपनो काम चलाउत रहो चाहिए। यही खा कही याद भैया कि जौन गांव में रहिए वही जैसी कहिए, ऊंट बिलैया ले गई सो हाजू हाजू कहिए। और देखो भैया, चलत चलत करवाऊ थे पंजन को मनोरंजन और सुनवाऊ थे एक लोकगीत, तो अपन सुनत है रामनाथ अहिरवार जी की गाई भई जा चेतावनी।

देखो भैया रो, अबे अपन सुन रहे थे चेतावनी, जी गा रहे थे रामनाथ अहिरवार जू। और भैया यही चेतावनी के संगे संगे आज को ग्राम सभा कार्यक्रम को समय पूरा होते है, तो बता दें पंचन काल के कार्यक्रम काल हमारे पंच सुने रमतुला कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों और फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति जो की हुई है। संगे हुए भेंट वार्ता भारत में प्राकृतिक कृषि का मूल्य धारा में समावेश विषय पर डॉक्टर सागर नागवंशी से बातचीत। और भैया संगे रोजिना की नाई हुए आज की सीख विषय है जान के लाली पढ़ना। और भैया अपनो तो अपनो बतका हुए, तब तक के लाने लेते हैं पंचन से अनुमति। पंचो राम राम।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। हमारा अगला कार्यक्रम सुर्खियों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा।

सुने उद्यान लगाने की तैयारी कैसे करें डॉक्टर विजय अग्रवाल से, और लोकरम फरमाइशी हमारे जो है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम जरूर सुने। तो अब हो रही चलबे की भैया दे रानी बहन को अनुमति। राम राम जय सीताराम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
3: मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूं तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहां पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और सबसे बड़ी चीज है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों

0: बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले आने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाइडन की है वहां पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जाकर के और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए मेटा डेटा बदलने के लिए इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और संबंध के सारे आयामों पे, इसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई और साथ साथ विश्व में जो अभी आर्थिक स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में उन्होंने जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की। और यही नहीं इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूं और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
1: अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडिल ईस्ट का जो ईरान यूएस इजराइल का वॉर है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो

0: एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नीदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर जो हमारे एम्बेसडर है कुमार तोहिन की बात से बताया और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए वहां करके एक बात कही कि WAH जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और हमारे एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट थी पे काफी कुछ लिखा है उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया और एक रोड मैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहां पर उनका पूरी सारी कंपनी, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पर। मुझे याद है जब मैं वहां स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहां के ट्रेड मिनिस्टर थे लिव पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, छोटे से देश हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब में बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा, पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है, तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
1: जी आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली, अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
2: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो FTA है ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
0: देखिए जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ ट्रेड में रखें तो बायलैटरल तो ही है वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर। तो अब यह कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट उसमें पूरी

0: मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा एक दो साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी आशाजनक है
1: जी। और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि

0: ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूं वो काफी आशाजनक है।
1: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं?
0: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन, नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं। खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे है और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
1: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिविनायक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति है आकाशवाणी भोपाल की।

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में, पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2000

0: 20 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में, ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
0: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है, जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
0: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सके।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएमसी स्कूलों की क्या विशेषताएं है?
0: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथिन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए, इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
0: निश्चित रूप से, एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथिन का यूज बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है, किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
0: निश्चित रूप से, हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमसी योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
0: पीएमसी योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन है, जैसे निफ्ट है, NID है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं, तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल,

0: पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
1: नमस्कार, बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं, ये कार्डबोर्ड लकड़ी घास फूस इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया जिसको मैंने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। बच्चों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज करके क्रिएटिव यूज कर सकते हैं और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड और जो वेस्ट मटेरियल को यूज करने का तरीका, इन सब तरीकों को लेकर हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
0: श्रोता, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
2: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया उन सब में इंटरएक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरएक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफी सारी चीजें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफी बुलंद ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा।
3: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए,

0: पीएमसी देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति थी आकाशवाणी भोपाल की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत
1: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

शबनम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार थे जावेद अनवर, संगीत निर्देशन था उषा खन्ना का।

लीजिए आप सुनिए अगला गीत, फिल्म है आरती, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशन रोशन का, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगी।
2: वाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग।

0: आकाशवाणी द हेग विद लेंस।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
5: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितुआंग को गिरफ्तार किया है। थान सितुआंग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरूद्व ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण मकान

सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
1: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
2: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
2: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
2: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
2: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गई, आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा, 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
2: ओके।
3: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा,
4: हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
2: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह।
4: अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
2: अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
4: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
2: मेरी शादी नहीं हुई है।
4: क्या?
2: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
4: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
2: कई वर्ष हो गए।
4: आपके बहुत मित्र हैं?
2: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
4: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
2: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
4: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है?

0: क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
1: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
2: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ हैं जो परिवार के शासन से परेशान हैं, कुछ को आज की शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं, ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।
0: अब आती हूँ।
3: बाहर अभी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
4: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
4: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
4: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
3: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
4: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
4: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
4: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
4: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
4: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
4: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूं हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
4: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
4: गणित, विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
4: आप ऊपर कैसे जाएंगी?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
4: ना, ना, ना, ना, ना, ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुराकर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही हैं? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
4: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था।

0: लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडित को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई। तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
2: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
2: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
2: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
2: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
1: नहीं।
2: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व तो एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
2: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
2: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
2: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही है। न जाने कितनी गांठे पड़ी है उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
2: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
2: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
2: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
2: प्लीज,
1: मर्द तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छेड़ने वाली है।
2: देखो,
1: ये दलीलें अब्बासी हो
2: चुकी है।
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
2: अब मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
2: सांत्वना,
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
2: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की

0: तरह प्यासे हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
1: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
0: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
1: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
0: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
1: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
0: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
1: इसका अर्थ समझी?
0: समझी, वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
1: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
0: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
1: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई, कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपी से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह की मिलन

0: कौन सा छत्न इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छत्न, ये छत्न है, इस छत्न से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को। पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा। माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है, कैसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
4: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
4: सांत्वना, हमें यह लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
4: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
4: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
4: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे, बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: अब नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और ना अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुम में और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता।

0: है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को, इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
1: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
0: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
2: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ। विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
2: ओह, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
1: निगम, इनसे मिलो। ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
2: वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
2: आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
2: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। पर सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
1: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
1: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
1: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है।
1: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, बिच्छू का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में बिच्छू का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
1: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर, मैं यहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
3: जी अभी आया।
1: लाइए, मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
2: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
1: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

यूट्यूब पे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत है सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के चालीसगांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगूबाई कुर्दीकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार रागचंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over tantakari and layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

गुमनाम फिल्म के इस नगमे को गाया था लता मंगेशकर जी ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार की इस महफिल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद आप सुनेंगे ठीक 11:10 पर खास प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 111। तो सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari.

इसी मीटर पर कल सुबह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद। सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर कल सुबह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।